0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, ਡੀਆਰਐਮ 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, ਐਫਐਮ 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, ਐਫਐਮ 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਅਤੇ ਡੀਟੀਐਚ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्रैम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और

0: मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मेड़ेवेब 347.6 मीटर या 973 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत।

मेरी हर उलझन दा हल तेरे दर ते है, मैं सिर्फ कोशिश कर सकदी हाँ, बाकी प्रभु सब तेरे हाथ विच है।

राजा जनक की यज्ञशाला जानकी के स्वयंवर के अनुरूप सजाई गई है। शुभ घड़ी जानकर राजा जनक ने सीता को यज्ञस्थल पर बुला भेजा।

0: 9 ਵਜੇ ਅਨੁਗੂੰਜ ਅਤੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਰਵੀਵਾਸਰੀ ਹੈ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਸਭਾ। ਡੀਟੀਐਚ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3:02 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਤ 11:10 ਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੌਗਾਤ ਦਾ। ਇਸੀ ਪਰਚੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 6:55 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਈਐਮ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੰਪ੍ਰਤੀ ਵਾਰਤਾ ਸ੍ਰੂਯੰਤਾਮ ਪ੍ਰਵਾਚਕ ਪੁਨੀਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य प्रातः 11:00 आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 34th संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि आकाशवाणी वार्ता विभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धः भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य अनन्तरं आकाशवाण्याम् अस्य प्रसारणं क्षेत्रीयासु भाषासु अपि भविष्यति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः गतसायं म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिना यू मिन आंग लाइंग इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉक्टर जयशंकरः दीर्घकालं यावत् द्वैपाक्षिकं सहकारं सुदृढं कर्तुं म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतेः सकारात्मक भावस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् सः शान्तेः प्रगतेः समृद्धेः च सहभागित्वम् इतोपि सुदृढं कर्तुं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह श्रीलाइंग वर्यस्य मेलनस्य प्रतीक्षायाम् अस्ति। उभयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकानां सभ्यतानां च सम्बन्धान् दृढीकरणाय राष्ट्रपतिः श्वः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह चर्चिष्यति। पूर्वं ह्यः म्यांमारदेशस्य राष्ट्रपतिः बिहारस्य गयायां गत्वा महाबोधिमन्दिरे प्रार्थनां कृतवान्। अवधेयं यत् राष्ट्रपतिः ह्लाइंगः 5-दिवसीय भारतयात्रायाम् अस्ति। दिल्ल्यारक्षिबलस्य विशेष प्रकोष्ठेन पाक आईएसआई मुंबई अंडरवर्ल्ड्स जालेत्यस्य आदेशेन कार्यं कुर्वन्तः अष्टौ अभियुक्ताः निगडिताः। वार्ताहरान् संबोधयन् दिल्ल्यारक्षिबलस्य विशेष प्रकोष्ठस्य विशेष सीपी अनिल शुक्लः अवदत् यत् अभियुक्ताः दिल्लीनगरस्य महत्वपूर्णस्थानेषु सुरक्षाकर्मचारिषु च आक्रमणं कर्तुं नियुक्ताः आसन्। सः अवदत् यत् तैः सह शस्त्राणि विस्फोटकानि च प्राप्तानि सन्ति। श्रीशुक्लः सूचितवान् यत् अभियुक्ताः सीमापार निर्वाहकानां निर्देशानुसारं कार्यं कुर्वन्तः आसन्। ते दिल्ली महाराष्ट्र पुणे नगरेभ्यः निगडिताः। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग सेट्टी इत्यनयोः युगलं निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। उपान्त्यचक्रे भारतीय दलेन दक्षिण कोरिया दलं पराजितम्। महिलानां अन्ताराष्ट्रिय 20-प्रति-20 द्वितीया क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड दलयोः मध्ये गत सायं जातायां स्पर्धायां इंग्लैंड दलेन भारतं 26 धावनांकैः पराजितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलं अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी

एक शब्द है मोहब्बत, इसे करके देखो तो तुम तड़प ना जाओ तो कहना। एक शब्द है मुकद्दर, इससे लड़कर देखो तुम हार ना जाओ तो कहना। एक शब्द है वफा, जमाने में नहीं मिलती कहीं ढूंढ पाओ तो कहना। एक शब्द है आंसू, दिल में छुपाकर रखो तुम्हारी आंखों से ना निकल जाए तो कहना। एक शब्द है जुदाई, इसे सहकर तो देखो तुम टूट कर बिखर ना जाओ तो कहना। एक शब्द है ईश्वर, इसे पुकार कर तो देखो सब कुछ पा ना लो तो कहना। सोनी सवेर प्रोग्राम सुनने वालियां दी खिदमत विच पूजा हांडा दी प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल ते अदाब। ते इस मनोरंजन परे जानकारी परे सफर दी कर दित्ती है असी शुरुआत, हो जाओ तुसी तैयार मेरे नाल ठीक है सफ़र 8 बजे तक का तय करन दे लई। बहुत सारिया गल्लां बातां, बहुत सारिया जानकारियां ते बहुत सारिया सक्ष

उठ के बस उस परमात्मा को मंग रही हाँ, तो मेरे अंदरों जोर जोर दी रोना जड़ा है वह आ रहा है। ये सब सुन के सेठ का दिल पिघल गया। उसने उस वेले एंबूलेंस के नंबर पर फोन किया, बच्ची नू हस्पताल दाखिल करवाया। डॉक्टर ने 1.5 लाख रुपए का खर्चा दसिया। सेठ ने पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लै ली। उस औरत नू अपने घर नौकरी च भी ले आया, तो अपने सर्वेंट क्वार्टर दे विच रहन दे लई जगह भी दिती। बच्ची की पढ़ाई की जिम्मेवारी भी ले ली। सेठ कर्मठ तो सी पर नास्तिक भी सी। हुण उसके मन दे विच 100 सवाल चल रहे सी। उसकी बेचैनी तो उस वेले खत्म हो गई सी जदों उसने एंबूलेंस नू सद्या सी। वह सोच रहा सी कि आखिर यह कीड़ी ताकत सी जो मैनू इत्थों तक लैके आई, कि यही परमात्मा है? तो जे ये परमात्मा है तो लोग धर्म जात पात दे लई फिर क्यों लड़ रहे ने? ना तो मैं उस औरत की जात पूछी, ना ही परमात्मा ने उसकी जात पूछी। उसने तो उसका दर्द वेख्या, तो मैनू इन्ना घुमा फिरा के उस तक पहुँचा दिता। हुण सेठ नू समझ आ गई कि कर्म दे नाल सेवा भी किन्नी जरूरी है। जदों किसी व्यक्ति दे कर्म उसका धर्म बन जाते हैं तो फिर उसनू दिखावा करन दी लोड़ नहीं रहिंदी, क्योंकि उसका व्यवहार ही उसकी पूजा बन जाता है, तो उसकी मनुखता उसकी सब तो वड्डी पछाण बन जाती है। जी दोस्तों, किसी लोड़वंद की मदद करके असी सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं सगो अपने दिल में भी खुशी और संतुष्टि दे नाल भर लेंदे हाँ। सो असी भी जो भी सानू मौका मिले किसी जरूरतमंद की लोड़वंद की जरूर मदद कर करिए जिनी साढ़े को हो सकती है। इस दे नाल तुसी पाओगे कि थोड़े मन में सुख शांति ते सकून किन्ना ज़्यादा मिल जाएगा।

0: नशा कोई भी है, मतलब सुना तो दूरी बना के रखिए, और अगर देखो कोई भी इसका सेवन करता है तो आज तो प्रण लेंगे कि अभी इसका सेवन नहीं करना, और आसपास से किसी भी मेंबर नु अगर कोई नशा कर रहे हैं या ड्रग ला रहे हैं या टबाकू यूज कर रहे हैं फिर उन्होंने भी प्रेरित करके कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, ये भी इस्तेमाल नहीं करना।
1: जी जी ते एक बारी तुसी नंबर जेड़ा टोल फ्री नंबर दस्या सी, जे कोई साड़ी गलबात सुन के नशा छड़ना चाहुंदा है तो वो नंबर एक बारी जरूर रिपीट कर दियो।
0: 1-800-11-2356 मिस्ड कॉल जेड़ा हैगा नंबर है 011-2290-1701।
1: जी असी डॉक्टर संदीप कुमार जी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि नशा जिहड़ा साडे नौजवान पीढ़ी नू बिल्कुल खराब कर रहा, उन्हां दीआं जड़ां जिहड़ियां खोखलियां कर रहा, नौजवान पीढ़ी जरूर इस नशे तो दूर होकर एक सेहतमंद जीवन शैली नू अपनाउण दे लई उपराला करेगी। असी प्रोग्राम दे विच तुसी फोन लाइन राही साडे अज दे दिन नू स्रोतियां नू बहुत वधिया जानकारी दित्ती, इस लई बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं तुहाडा।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू, तुसी मैनु ये मौका दिता श्रोतियां दे रूबरू होण दा, इस लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
1: जी एसी डॉक्टर संदीप कुमारी जी क्लीनिकल मनोविज्ञानी अते काउंसलर सरकारी नशा छुड़ाऊ अते पुनर्वास केंद्र होशियारपुर दे। जी दोस्तों किसी भी दिन नूं मनाउण दा मकसद उदों ही पूरा हो सकता है जदों उस प्रति असी जदों जागरूकता फैलाउंदे हां, तो उसका मतलब भी यही है कि तुसी सारे जागरूक होवो अपने आले दुआले अपने परिवार दे विच, जेकर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का नशा कर रहा है तो उस नूं उस नशे नूं छुड़ाउण दे विच मदद करो, क्योंकि तुहाडी मदद तुहाडा उस दे नाल साथ तुहाडा रवैया उस व्यक्ति नूं नशा छुड़न दे लई विच योगदान दा जिथे देवेगा उथे नशा छड्डन दे लई प्रेरित भी करेगा। सो अज दे दिन नूं मनाउण दा मकसद साडा तां ही पूरा होएगा जेकर असी किसे ना किसे व्यक्ति नूं नशा छड्डन दे लई जरूर प्रेरित कर सकीए।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई थी।
3: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की।

0: आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
2: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचन क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
3: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर IPL 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम

0: 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
1: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। आईपीएल के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर आरसीबी का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात प्रोग्राम विच देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार सांझे करनगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय समुद्री फौज ने ऑपरेशन सिंदूर दौरान पूरी पाकिस्तानी समुद्री फौज को अपनी बंदरगाहों तक सीमित रहने लिए मजबूर किया। केंद्र सरकार ने कल तो शुरू हो रहे पंद्रवाड़े लिए पेट्रोल डीजल और हवाई ईंधन से बरामदी महसूल में सोध की है। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन भारत के 5 दिन दौरे से कल नवी दिल्ली पहुंचे। इस तों पहले उन्होंने गया के महाबोधि मंदिर में पूजा की। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स नाल होएगा। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी ते मन की

0: नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: On boys, let's go practice.
2: ओए रुक यार, मेरे बैंक खाते विच गलत एंट्री दी प्रॉब्लम हो गई है।
1: ओए तो बैंक को शिकायत करना।
2: बैंक नु लिखे एक महीना हो गया है पर ओ गुगली ते गुगली सुटी जा रहा है। ता आरबीआई दे बैंकिंग लोकपाल नु शिकायत कर।
3: रुक मैं समझाऊंगा। जिवे क्रिकेट विच थर्ड अंपायर ओवे ही आरबीआई दा बैंकिंग ओंबड्समैन। आरबीआई कहंदा है जे बैंक तुहाडी शिकायत एक महीने विच नहीं सुलझाउंदा ता तुसी आरबीआई दे कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम दे ऑनलाइन शिकायत कर सकदे हो। ए आरबीआई दा सौखा तरीका है तुहाडी शिकायत सुलझाउण दा ते ओ वी मुफ्त। आरबीआई कहंदा है जानकार बनो सचेत रहो।
4: असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। मीडिया वेब 347.6 MHz से आओ हूँ तरसेम मसीह के साथियों के गाए मसीही भजन सरवण करते हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम दे विच देश विदेश दे लोकां नाल अपने विचार सांझे करनगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय समुद्र फौज ने ऑपरेशन सिंदूर दौरान पूरी पाकिस्तानी समुद्री फौज नूं अपनियां बंदरगाहां तक सीमित रहने लई मजबूर किया सी। केंद्र सरकार ने कल तो शुरू हो रहे पंद्रवाड़े लई पेट्रोल डीजल अते हवाई ईंधन ते बरामदी महसूल विच सोध कीती है। म्यांमार दे राष्ट्रपति ओ मिन आओ लाइन भारत दे पंज दिनां दौरे ते कल नवीं दिल्ली पहुंचे। इस तो पहलां उन्हां गया दे महाबोधि मंदिर विच पूजा कीती। तंबाकू दे खतरां विरुद्ध जागरूकता पैदा करन लई अज विश्व तंबाकू रहित दिवस मनाया जा रहा है। पंजाब पुलिस मुखी कौरव यादव ने अमृतसर दा दौरा कीता अते सीनियर अधिकारियां नाल अमन कानून दी हालत दा जायजा लिया। पंजाब सरकार वल्लों सूबे दे समूह सरकारी एडिड अते प्राइवेट स्कूलों च 1 जून तो 30 जून तक छुट्टियां दा ऐलान कर दिता गया है। IPL क्रिकेट दे फाइनल विच अज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु दा मुकाबला गुजरात टाइटन्स नाल होएगा। अते भारत दे 18 साल राहुल जाखड़ ने हांगकांग विच 22वीं एशियन अंडर 20 एथलीट्स चैंपियनशिप विच मर्दा दे टेकेथलोन मुकाबले विच सोने दा तमगा जित्या है। ए सी हुण तक दीआं मुख खबरां। एक जरूरी सूचना, रोज़ाना शाम 7:30 बजे प्रसारित होने वाला खबरां दा बुलेटिन 1 जून तो 21 जून तक शाम 7:30 बजे प्रसारित किया जाएगा।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला 1 मिनट लई रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
0: असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। मीडिया वेब 343.6 मीटर या 873 किलोहर्ट्ज़ से। आओ हुण सुनदे हां शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम सुर साधना। अज के इस प्रोग्राम दे विच आओ पंडित भीम सेन जोशी दा गाया राग तौड़ी सुनदे हां।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार जी। कौन बोल रहे हो
1: मैं राकेश कुमार बोल रहा जी, मनेर कोले तो।
0: जी? राकेश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा।
1: धन्यवाद जी, तुहाडा भी स्वागत है जी। कल गर्मी बहुत सी, मीह पै गया जी, बहुत वधिया मीह पै गया।
0: अज मौसम दे विच थोड़ी जी
1: हाँ
0: ठंडक
1: जी
0: है ना, हवा दे
1: हाँ जी
0: विच।
1: हाँ जी, ठंडी ठंडी हवा है जी।
0: हाँ, ठंडी हवा हो गई है जी। इसे
1: हाँ
0: तरह
1: जी
0: जदों सानू थोड़ा मौसम मुताबिक चीज़ मिलती रहे ना, जिदा थोड़ा जा मीह पिया बस,
1: हाँ
0: लेकिन
1: जी
0: उहदे ने वो मौसम दे विच तब्दीली जरूर आ गई, तापमान दे
1: हाँ जी
0: विच
1: हाँ जी
0: तब्दीली आ गई है ना, तो
1: हाँ जी
0: चंगा
1: हाँ जी,
0: लगता है जी।
1: थोड़ा शरीर भी तंदुरुस्त हो जाता है।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल। ते हुण तुसीं
1: हाँ
0: गीत दसदे हो जिस दे नाल तुहानू भी बड़ा चंगा चंगा लगेगा जी।
1: जी गुमराह महेंद्र कपूरी आवाज।
0: जी, महेंद्र कपूर की आवाज़ दे विच तुहाडी
1: हाँ
0: पसंद दा
1: जी
0: गीत तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं।
1: जी
0: शुक्रिया कॉल करन दे लई
1: धन्यवाद जी,
0: जी।
1: शुक्रिया जी, थोड़ा जी बहुत बहुत।

0: बात करके देखते हैं। हेलो,
1: हेलो, सत श्री अकाल पूजा मैम।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: मैं कुलवंत सिंह, पिंड पोजो के जिला फिरोजपुर तो बोल रहे मैम। धन्यवाद
0: जी कुलवंत जी, तुहाडा प्रोग्राम दे विच बहुत बहुत स्वागत करते हैं
1: मैम, ताडा फिरोजपुर के फोन राही आए जी।
0: जी। ते की कर रहे सी इस वेले कुलवंत जी?
1: मैम प्रशादा छक के बैठे ही, बस प्रोग्राम सुनते पे।
0: ठीक है। ते गीत पहले ही सोचा हुंदा है कि आज प्रोग्राम दे विच फोन मिल जाना तो मैं गीते सुनना है जी।
1: हाँ मैडम, कल बड़े बड़ा मिलाउंदे रहे, पर कल भी ताडी ड्यूटी लगी, कल मिलया नहीं जी।
0: ते अज मिलना सी ना, इस करके नहीं कल मिलिया।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: कहिंदे हुंदे ना कि कई वारी रब ने साडे तो ज्यादा अगे दा सोचिया हुंदा है जी साडे लई।
1: हाँ जी, हाँ जी मैम, हाँ जी।
0: ठीक है जी, ते हुण गीत दस दियो।
1: गीत कुर्बान फिल्म दा जी, धरती चांद सितारे।
0: उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल दीयां आवाज़ां दे विच कुर्बान फिल्म दे विचों तुहाडी पसंद दा गीत तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया कॉल करन दे लई जी।

0: मैडम जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
0: हाँ जी, बिगलबाग से बोल रहे हैं जी, मनजीत तनेजा।
1: मनजीत तनेजा जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम दे विच।
0: शुक्रिया जी, मेहरबान जी।
1: की काम काज करते हो?
0: अपना वैरायटी स्टोर है जी।
1: अच्छा जी, तो इस वेले दुकान ते हो जी? फिर
0: हाँ जी, हाँ जी, दुकान पे है जी।
1: ते दुकान ते रेडियो फिर सवेरे जदों आंदे उदो ट्यून कर लेंदे हो?
0: हाँ जी,
1: सारा
0: ऑन
1: दिन
0: स्टार्ट
1: चलदा
0: कर लीजा सुबह जी।
1: ते आकाशवाणी जलंधर सुनते हो जो होर भी केंद्र जड़े आ ट्यून
0: नहीं जी,
1: करते हो?
0: स्टेशन तो हो सुनी दी है, बथेरे जी,
1: अच्छा
0: सुरत गाड़ बठिंडा काफी सुनी है
1: मिलना
0: जी।
1: तो जेड़े जेड़े केंद्र ते फरमाइशी प्रोग्राम लगते ने ना, बस उन उदो उदो ट्यून कर लेंदे। उन्हां दा समां बिल्कुल डायरी दे पन्नियां दे उत्ते नोट करके रख्या होया,
0: हाँ जी, बिल्कुल जी,
1: नंबर भी रटे हुए ने।
0: बिल्कुल ध्यान है पूरा जी।
1: ठीक है जी, ते साडे इस प्रोग्राम दा नंबर भी दस दिओ।
0: जीरो 181 23 42 173।
1: जी, 10 ते विचों 10 नंबर पूरे जी, तुहानू बिना तुसी रुके हुए नंबर बिल्कुल ठीक दस्या जी। ये तो पता लगता है आकाशवाणी नाल किन्ना प्यार है जी तुहानू। गीत दसो, केड़ा सुनोगे?
0: फिर मैं जी सूरज समझा गीत है जी, मोहम्मद रफी वाच, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया।
1: चलो तुसी फुल्लां दा बुक जिहड़ा उह भर लो, गीत तुहाडी पसंद दा तुहाडे तक आ गया। शुक्रिया कॉल करन दे लई जी।
0: ओके मैम।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181

0: 2983036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: आकाशवाणी के जलंधर केंद्र से इस वेले तुसी हैलो फरमाइश प्रोग्राम सुन रहे हो। तो इस प्रोग्राम के विच तुहाड़ियां फरमाइशां नूं तुहाड़े तक पहुँचाया जा रहा है 0181 2342 173 नंबर नूं जदों तुसी डायल करदे हो तो साडे इस प्रोग्राम के विच पहुँच जांदे हो। अगले कॉलर भी आ गए ने अपनी फरमाइश के नाल, गलबात करदे हां। हैलो
3: हैलो
2: नमस्कार जी। हैलो
3: हैलो
2: हाँ जी, अपना नाम पता ग्राम दसो।
3: मेरा नाम गगनदीप सिंह जी।
2: जी
3: गिदड़वा तो बोल रहे हैं जी।
2: जी गगनदीप जी, पहले तो पिछे रेडियो सेट की आवाज कट कर लो।
3: ठीक है मैम
2: जी। जो फोन लग जाता है ना फिर जो गल ऑन एयर तो हो रही होंगी है तो उदो जाता रेडियो तो दूरी बना लिया करो।

0: जी अपना नाम पता ग्राम दसो।
1: मेरा नाम गगनदीप सिंह
0: जी
1: जी, गिदड़वा तो बोल रहे हैं जी।
0: जी गगनदीप जी, पहले तो पिछले रेडियो सेट की आवाज कट कर लो
1: ठीक है मैम।
0: जी। जो तो फोन लग जाता है ना, फिर जो तो गल
1: हाँ
0: ऑन ईयर तुहाड़ी हो रही होंगी है, तो उदो जाता रेडियो तो दूरी बना लिया करो, कमरे चो बाहर आ जाया करो, या फिर ओदी आवाज कट कर लिया करो।
1: ठीक है मैम। अभी तो फर्स्ट बार ही ला रहे हैं, पहली बार ला रहे हैं कॉल
0: पहली बारी
1: अभी।
0: फोन लगा है
1: हाँ जी पहली बार कॉल लग गया जी। अभी फ्री
0: जी।
1: सी आज बैठे थे जी।
0: एतवार दी छुट्टी मना रहे सी।
1: हाँ जी
0: की काम काज करते हो?
1: मेरा ट्यूबवेल का काम है, ट्यूबवेल का
0: अच्छा
1: बोरा
0: ही,
1: का काम है।
0: ते अज
1: हाँ
0: कर
1: जी
0: सी ते हुन।
1: हाँ
0: वैसे
1: जी
0: तो तुहाडा बोरां दा काम है, ते जमीनी
1: ओके।
0: पद्धर ते असी पानी दा लेवल किन्ना नीचे, किन्ने लेवल तक पानी मिल जांदा सानू?
1: अपने इधर तो इधर उत्ते ही मिल जाता मैम, 10 फुट ही, 10-15 बस एंड।
0: अच्छा ही, तो वैसे तो
1: हाँ
0: असी
1: जी
0: कहिंदे आ ना कि इहदा लेवल बहुत डिगदा जा रहा, बहुत डूंघाई तक जिहड़ा पानी आ
1: हाँ
0: उह जमीन दे विचों खत्म हुंदा जा रहा।
1: जी। बाकी अपने इधर मुक्तसर एरिया जी, गिदड़वा एरिया जी, इधर थोड़ा लेवल है जी ऊपर ही है जी, अजे डाउन नहीं गया था।
0: ठीक है, ते
1: हाँ
0: जिहड़ा
1: जी
0: तुसीं कहिंदे 10-12 फुट तक पानी मिल जांदा है, एक की पानी जिहड़ा है पीण योग है, साफ पानी मिलदा है?
1: हाँ जी। मान लो अपने कई एरिया च 100 फुट तक पानी वधिया पीण योग है जी, वधिया 100 फुट तक ही वधिया
0: ठीक है
1: मिल
0: जी,
1: जाता, जमीनी तौर ते वधिया, ते पीण च वधिया मिल जाता जी, बहुत
0: चलो
1: वधिया।
0: बहुत वधिया। ते अज घर बह के फिर रेडियो दा साथ तां हैगा, होर की खास कर रहे हो फिर छुट्टी नूं मनाउण दे लई?
1: नहीं कर रही है मैं, होर तो कुछ कुछ नहीं खास कर
0: चलो
1: रहे।
0: आराम कर रहे हो ते आराम दे नाल नाल हुण गीत दा मजा लो अपने। अपनी पसंद
1: हाँ
0: दा
1: जी
0: गीत दसो, केड़ा सुनोगे?
1: हिंदी सॉन्ग सुना दो, तेरे नाम सॉन्ग फिल्म दा जी।
0: तेरे नाम फिल्म दे विचों गीत तुहाडे तक पहुंच रहा जी, शुक्रिया कॉल करन दे लई जी।
1: थैंक यू मैम।

0: तुम्हारे नाम से शुरू तुम्हारे नाम पर ख़त्म होती है मेरी हर धड़कन की कहानी, बस तुम पर ही आकर रुकती है। बिल्कुल जी, तुहाडे नाम दे नाल तुहाडियां फरमाइशां नूं तुहाडे तक पहुँचाया जा रहा है। प्रोग्राम है हैलो फरमाइश, तो प्रोग्राम तुसी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो इस वेले सुन रहे हो। तो प्रोग्राम दे विच अगले कॉलर अपनी केड़ी फरमाइश दे नाल आए ने, आओ गलबात करते हैं। हैलो
1: जी, जी ताजमहल फिल्म है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।
0: जी बिल्कुल, जो वादा किया असीं निभावांगे, तुहानूं तुहाडी पसंद दा गीत सुनावांगे। पहला अपना नाम पता ग्राम दसो जी।
1: किन्नी जमातां मदर रियाज, मेरा नाम है संदीला, मैं मेरी जात है, जिम्मेदार हां मैं।
0: अच्छा जी,
1: अपने भरा दी कोठी च बैठा होया, पिंड साडा बाहरों ट्रालियां लंघ रहियां ने, आवाज आ रही तुहानूं, मिट्टी लै के पट्ठे दे राह साडा उन्हां खराब कर छड्डिया है, सड़क पट छड्डी उन्हां ने।
0: अच्छा जी,
1: कार ते जाने ते बड़ी मुश्किल नाल जाने आ जी, रोज एसी खराब होया रहिंदा साडा।
0: नजारा देख ही रहे हैं, महसूस कर रहे हैं जी। रेडियो दे दीवाने हो, रेडियो ना कितना प्यार करते हो।
1: बहुत ज्यादा जी, मैं रेडियो दा शुरू तों शौकीन आ, मैं टेपल टूपा कभी नहीं सुनिया सा, मैं बस फिल्मां वेंदा सा सिनेमा ज्यादा।
0: जलंधर
1: प्रोग्राम सुनना, इस बाद फिर मैं काफी सुनना जी।
0: ठीक है जी,
1: प्रोग्राम बहुत
0: ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੇ।
1: ਚਲੋ ਨਵਾਂ ਲਾ ਦੋ ਕਿਆਮਤ ਸੇ।
0: ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀ।
1: ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ
0: ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ?
1: ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਬਾਜੀ ਤਾਂ ਨੂੰ।
0: ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀ।

मोहब्बत कोई लफ्ज़ नहीं जो कह दिया जाए, ये वो एहसास है जो हर धड़कन में महसूस किया जाए। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी दे गाए तुमसे अच्छा कौन है फिल्म दे विचों ले। इस गीत दे नाल ही अज दा हैलो फरमाइश प्रोग्राम मैनू इत्थे ही खत्म करन दी इजाज़त दे दिओ, पर तुसी आकाशवाणी दे अलग अलग सिलसिलियां दे नाल इसे तरह बने रहना। नमस्कार।

0: के अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेली लॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किड बैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
5: चले
6: ले, आ गया नया किड बैग।
7: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
8: पर्सनल लोन ऑफर
9: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
8: फ्री ट्रिप टू दुबई
9: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
10: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
9: तो क्या करूं?
10: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
9: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
10: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
11: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
12: नमस्कार सर। नमस्कार।
13: नमस्कार सर।

0: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे, फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले, फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर। एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा, तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो, तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
2: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा, तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा, तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है, तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता है भी इंडियन स्प्रिंट कर।
0: देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है?
2: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो, जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी।

0: तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी, कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूव किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर रिबिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा। क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
0: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे। तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया, फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी, मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
0: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है

देसी पे का दौर। देसी पे से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जाने बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देश

देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के

बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब, कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया।

0: धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: हुणे तुसी माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देशवासियों लई प्रसारण मन की बात

0: जुड़ांगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: हुणे तुसीं मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दे देशवासियां लई प्रसारण मन की बात दा पंजाबी रूपांतर सुन रहे सी। आकाशवाणी दे बठिंडा, चंडीगढ़, लुधियाना ते पटियाला केंद्रां तों वी इह प्रसारण नालों नाल कीता गया। पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण तुसीं रात 8 बजे फिर सुन सकते हो।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। सवेर दे 12:05 होए ने ते लो जी, नन्ने मुन्ने दोस्त अपना प्रोग्राम सुनन गे बाल जगत।

0: जय हिंद।
1: कदे उदासी आवे मन ते बच्चे करदे दूर, गोदी दे विच आके बैठन सब गम चकना चूर। इना प्यारे प्यारे होनहार बच्चियां दा मनपसंद प्रोग्राम लैके उना दे रेडियो सेट उपर हाजर हो चुके ने जी, सुखदीप और हरप्रीत। और एतवार दी इस खूबसूरत जी दोपहर नू होर ज़्यादा खूबसूरत बनाउण दे लई प्यारे बच्चियों तुहाडियां हाजरियां भी इस प्रोग्राम दे विच लगणगियां।
0: और तुसी जिस तरीके दे नाल अपनियां परफॉर्मेंस साडे नाल सांझियां कीतियां ने, बा कमाल है। और सानू पता है कि जिहड़ा एतवार दा दिन हुंदा, बाल जगत प्रोग्राम हुंदा, तुहानू भी इंतज़ार हुंदा कि तुहाडियां आपदियां परफॉर्मेंस दा, गीत संगीत दा और इनफॉर्मेशन दा। तो बच्चियों, हुण इंतज़ार दियां घड़ियां खत्म हो गईयां ने, आपां हाज़र हो चुके हाँ और ढेर सारियां गल्लां बातां असीं तुहाडे नाल करनियां ने। पर सब तों पहलां तां बच्चा पार्टी, पाणी पूणी पी रहे हो ना? इन्नी गर्मी पै रही है, कल ते मीह आ गया सीगा, ठीक है, पर इहदा मतलब इह नहीं हैगा कि एक दिन मीह ते तुसीं अपना पाणी पीणा छड्ड दो।
1: लो जी प्यारे बच्चे, छुट्टियां तुहाडियां होण वालियां ने और कई बच्चों नूं ना हरप्रीत जी सरप्राइज़ हो जाना।
0: कहते सरप्राइज़?
1: सरप्राइज़ ये हो जाना कि उन्होंने टीचर साहबान जदों उन्होंने घर के विहड़े देख आ जाने ना, तो पहला तो उन्होंने डर जाना, हाए ये क्यों आ गए, मैं तो कोई गलती की नहीं।
0: शिकायत लाने आए होंगे।
1: हाँ, पर नहीं प्यारे बच्चे, ये जिहड़े टीचर साहबान कोइंसीडेंटली तुहाडे घर आउणगे ना, ये पता क्यों आ रहे ने तुहाडे घरां दे विच? जनगणना चलती पई है। जनगणना दा भाव है कि असी किन्नी पापूलेशन कर ली है, साडा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हुण की है, असी की खांदे हाँ, की पींदे हाँ और किवें दे घरां दे विच रहिंदे हाँ। ये सारे अंकड़े सरकार हर थोड़े थोड़े सालों बाद इकट्ठा करती है और वह इकट्ठा करन दे उत्ते तुहाडे टीचर साहबान की ड्यूटी जिम्मेवारी दे नाल लगाई गई है, जेडे पिंड पिंड शहर शहर गली गली सब दा डाटा कलैक्ट करते पे ने, और जदों भी वह आते ने तुसी उन्हां दे नाल कोआर्डीनेशन करनी है और मेक श्योर कर लियो कि ये वह बकायदा उही परसन ने ना जिन्हां दी ड्यूटी लगी है, कोई होर परसन नूं तुसी अपनी वो अनमोल जानकारी

0: बिल्कुल नहीं देनी।
1: सब तो वड्डी गल है बच्चियो कि तुसी दरवाजा खोलना ही नहीं है ना, दरवाजा पेरेंट्स नू ही खोलन दो। अदरवाइज भी जदों तुसी सतर्क रहोगे डेफिनेटली ऐदा दे जड़े क्राइम्स ने ओ नहीं होणगे।
0: जी
1: तुसी बच्चे हो, छोटे हो, काफी गल्लां दा तुहानू नहीं पता चलदा। पेरेंट्स जदों तुहानू मना करदे ने ते उहनां दी गल मान लैणी चाहीदी हुंदी है और उहदे विच ही भलाई हुंदी है। और सब तो वड्डी गल है अगर कोई तुहाडे वेहड़े आउंदा पिया है ते तुसी होर कुछ करो या ना करो, एटलीस्ट उहनू पाणी जरूर पुछ लो जेकर तुहाडा जानकार है तां।
0: जी
1: और जे कोई अनजाण है, जिद्दां सेंसस वाले आ रहे ने, वो थोड़े लिए अनजाण ने, पर थोड़े पेरेंट्स नू समझ आ गया कि ये सही बंदे ने, पानी जरूर पूछो उन्हां नू, गर्मी बहुत है। हर कोई बंदे नू हाइड्रेटेड रहना चाहिए है, तुसी भी रहो और अगले नू भी रहन दो।
0: लो जी, प्यारे बच्चों का मनपसंद वाला प्रोग्राम चलता पिया है और गल्लां बातां साढ़े कोल प्यारे बच्चे अज बहुत सारियां ने और बड़िया खूबसूरत वालियां तुहाडियां हाजरियां भी ने। पर देखो जी हरप्रीत, गल्लां बातां आपां प्यारे बच्चों के नाल अप टू डेट जानकारी वालियां कर चुके हैं, तो क्यों ना पहला हुण एक गाना भी सुना दिता
1: बिल्कुल
0: जाए
1: जी,
0: बच्चों नूं।
1: साढ़े नाल राबता हमेशा ही कंप्यूटर भैया भी कायम करते ने क्योंकि वह चाहते ने कि उन्हां दे भी हाजरी प्रोग्राम बाल जगत दे विच लगे। तो कंप्यूटर वीर जी उदास नहीं होना, हरप्रीत दीदी ते सुखदीप भी जी लगान लगे ने विराम, ते वारी है तुहाडी, कड्डो अपने पिटारे चो एक प्यारा जिहा गीत ते मनोरंजन करो साढ़े सुनने वालियां दा।

0: भी अनेक हैं, राग भी अनेक हैं, किंतु गीत बोल एक, हम अनेक किंतु वे। एक मातृभूमि है, एक पितृभूमि है, एक भारती हम चल रहे मिला कदम लक्ष्य के समक्ष, एक हम अनेक किंतु वे। धन्यवाद।
1: लो जी, अभिनव का भी धन्यवाद, और होर जिहड़े बच्चियां ने अज सानू खूबसूरत वालियां रिकॉर्डिंग करके भेजियां ने उन्हां दा भी धन्यवाद, और उन्हां दे पेरेंट्स दा भी बहुत बहुत, उन्हां दे टीचर साहिबान दा भी धन्यवाद जिन्हां ने उन्हां नू मोटीवेट कीता, हैल्प कीती इस रिकॉर्डिंग दे लई। और प्यारे बच्चों, बाल जगत तुहाडा अपना प्रोग्राम है, हर ऐतवार नू आउंदा है, दुपहरे आउंदा है, ब्रेकफास्ट तुसी कर चुके हुंदे हो, और इस क वेले तक ना लगदा हुंदा कि कुछ सुनिया जावे, कुछ जानकारी दे विच वाधा कीता जावे। सो इस टाइम ते 12:05 ते तुहाडा मनपसंद प्रोग्राम आउंदा है जिहदे विच तुहाडी बहुत सारी जानकारी विच वाधा कीता जांदा है, और तुहाडियां खूबसूरत हाजरियां तुहाडी अपनी आवाज़ दे विच लगदियां ने। सो

0: प्यारे बच्चे सानू बहुत सारियां रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं, और हरप्रीत जी अज भी सानू प्यारे बच्चों ने बहुत सारियां रिकॉर्डिंग करके भेजिया ने,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और
1: भेज
0: असी मिस एक भी नहीं करनी, सारियां दियां सारियां हाजरियां प्रेजेंट दे विच लगानियां।
1: बिल्कुल लगा देनियां ने। और हुण जिहड़े बच्चियां ने रिकॉर्ड करके भेजिया है वो कहिंदे असीं ग्रुप सोंग भेजण लगे आ तुहानूं। सानूं मैसेज आया सीगा ग्रुप सोंग ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਸੌਂਗ।

0: और प्यारे बच्चों, वाकई जी कुदरत भी निरंतर बदलती रहती है और सानू भी यही सुनेहा दिंदी रहती है कि असी भी वगदे पानी वांगू वहिंदे रहिए, अपने आकार प्रकार नू समय स्थितियां दे अनुसार चेंज करते रहिए और नवीं नवीं चीज़ां सीखते रहिए। और हुण एक चैलेंज आउंदा पिया है, एक सीखण दी प्रवृत्ति बदलती पई है और असी भी उस दे अनुसार अपने आप नू ढाल लईए। और प्यारे बच्चों, AI टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी दे नाल पैर पसारदी पई है और प्यारे बच्चियां दी जिंदगी दे विच भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला हिस्सा बनदी पई है। और प्यारे बच्चों, तुसीं इहदा सार्थक वधिया वाला उपयोग करना। देखो साढ़े टाइम ते ना हरप्रीत, असी जदों समझ ना आनी ते या ते अपने मम्मी पापा नू पुछना या ओ किसे दोस्त तो पुछना जिन्हों वो गल समझ आ गई, जिन्हों वो सवाल समझ आ गया।
1: जी
0: और अज दे बच्चियां कोल की है,
1: AI

0: आई, और एआई जेड़ी भी चीज उन्हां नूं नहीं समझ आउंदी, जेड़ा भी सवाल रात नूं 10 बजे सवेरे 4 बजे उन्हां दे दिमाग दे विच आउंदा ना, ओह जाके एआई मोड दे अपना फोन करके जदों पुछदे ने ते उहदा खूब विस्थार सहित जवाब भी दे दिंदा। और कुछ एआई सिस्टम ते इदां दे ने कि जिहड़े प्यारे बच्चों दे नाल गल्लां भी करदे ने।
1: एग्जैक्टली
0: अच्छा प्यारे बच्चे, तुहानूं इह गल समझ नहीं आई, मैं तुहानूं इस तरीके दे नाल समझाउणा वां। हाँ हुण तुसीं समझ गए होगे।
1: बिल्कुल जी, भुलेखा पाण वाली गल हैगी है कि कोई टीचर बैठा है पर वाकई एआई एक टीचर दा रोल निभा रहा है। इत्थे सिर्फ जरूरत है थोड़े सतर्क रहण दी कि नो डाउट एआई दा मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नो डाउट ओहदा मतलब है हैगा कि असी मोबाइल दी वरतों करदे पए आ,
0: जी
1: नो डाउट है एक टेक्नीक है, पर बनाई तो ह्यूमन बीइंग्स ने है ना, ये सारा सिस्टम क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग्स ही है ना, तो दिमाग दे ह्यूमन्स दा ही लगा ना कि इस चीज़ नू क्रिएट करन पिछे, तो असी उपर ही रहना आ, इस चीज़ नू भुलना नहीं है। जे एआई थानू कोई आंसर दे रहा है ते बिल्कुल ही अखा बंद करके विश्वास नहीं करना,
0: जी
1: थोड़ा जिहा ओहदे ते अपना दिमाग इस्तेमाल करके ओहदी तुहानू तुसीं कह लो कि चीज़ समझ नहीं आ रही, समझ आ जाएगी, बिल्कुल आ जाती ओहदे नाल समझ, पर फिर भी हल्की जी ओहते होर गहराई नू समझण लई किताबां नू इग्नोर नहीं करना, क्योंकि सब कुछ किताबां दे विच लिखिया हुंदा आ, और ओहदे नाल इक जिहनू कहिंदे ना तालमेल बनाउणा, ओह इक तुहाडे लई इक हैल्प है एआई, ओहते फुली फेथ नहीं करना तुसीं।
0: पर असीं देखो जी अपने प्यारे बच्चियां ते फेथ कर सकदे हां, क्योंकि सानू ओह खूबसूरत वालियां रिकॉर्डिंग अपने आप करके भेजदे ने। और हरप्रीत हुण पता की है,
1: जी
0: मैनू तो एक ठंडी ठंडी हवा दा बुल्ला महसूस हुंदा आउंदा पिया है,
1: इस
0: क्योंकि
1: वेले
0: जिहड़ी आह वाली रिकॉर्डिंग आई है ना,
1: जी
0: ये आई है जी कांगड़े दियां खूबसूरत वादियां चो। ते लो जी, कांगड़ा होवे और प्यारे बच्चे दी परफॉर्मेंस होवे, ठंड ते आप ही पै जानी है बाल
1: बिल्कुल,
0: जगत दे विच।
1: ते सुनिए फिर उस बच्चे दी परफॉर्मेंस।
0: बिल्कुल जी।
2: नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम धरवी है, मैं गांव सुनू जिला कांगड़ा की रहने वाली हूँ। दोस्तों मैं आज आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है सीखो फूलों से नित हंसना, सीखो भोरों से गाना, तरु की झुकी डालियों से सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से सीखो लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। धन्यवाद।
0: धन्यवाद प्यारे बच्चियां दा भी, जिन्हां ने खूबसूरत वालियां रिकॉर्डिंग सानू करके भेजियां। और प्यारे बच्चे, ओ वाकई जी मिल मिला के रहण दे विच जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है, और कल्ले कल्ले ते प्यारे बच्चे ओ उदासी आ जाती है। सो ये दोस्ती, ये भाईचारा, ये सांझ, ये रिश्तियां दा निग तुसी माणदे ही रहना है। और प्यारे बच्चे, साडे नाल भी तुसी दोस्ती खूबसूरत वाली कीती हुई है, सानू खूबसूरत वालियां रिकॉर्डिंग करके भेज दिओ, सानू याद रख दिओ, और बाल जगत नू बड़ा प्यार दिंदे हो, बड़े माण दे नाल सुणदे हो, इहदे लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद।
1: असीं चाहुंदे हां कि तुसीं ऐसे तरीके दे नाल ही साडे नाल रिश्ता कायम रखो, साडा फर्ज़ है हैगा कि असीं तुहाडियां परफॉर्मेंस नूं तुहाडे नाल सांझा करिए और तुहानूं ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दईए, ढेर सारा एंटरटेनमेंट दईए, तो इह गिव एंड टेक जिहड़ा है ना इह चलदा रहना चाहीदा, सोहणा लगदा इह लेन देन। ते हुण असीं जांदे हां अगले बच्चे दी परफॉर्मेंस वल, सुणदे हां ओह बच्चा की कहना चाहुंदा है।
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਵੀਨ ਕੌਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਹ ਘਟਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਵਰਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਈਕਲ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਸਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫੇਫੜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਸਾਨੂੰ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧੂੰਆਂ ਜਾਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ। साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। दिन दा 1 बज रहा है। आहुन सुनदे हां हिंदी च समाचार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
6: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
6: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है।

0: वो भी भूलिएगा नहीं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले एक वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत करने पर बल दिया। सिलीगुड़ी में श्री बोस ने बताया कि पर्याप्त बाड़ न लगाए जाने के कारण भारत बांग्लादेश सीमा का एक संवेदनशील हिस्सा असुरक्षित बना हुआ है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण हो रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमताओं से लैस किया जाएगा। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा और ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दा 1:05 हुए ने ते लो जी हुण दस रहे हैं तुहानू परिचय तहत आज दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दी जानकारी। दिने 1:15 तो लैके 1:40 तक ते फिर 2 तो लैके 2:15 तक दा समा रहेगा रोजाना प्रोग्राम फौजी वीरां लई दा। दिने 2:30 रंगली धरती प्रोग्राम दे विच निरंजन सिंह नूर ढाडी ते साथियां नूं सुणोगे। 4:02 ते साडी दूसरी सभा दे शुरू च तुसी सुणोगे प्रोग्राम सिरजना। अज दे इस प्रोग्राम दे विच गुरतेज सिंह कोहारवाल दे नाल सुखजिंदर सिंह होणा दी गलबात दा मुड़ प्रसारण सुनाया जाएगा। शाम साढ़े चार बजे रोज़ की तरह असी तुहानू श्री दरबार साहिब अमृतसर लै चलांगे जिथों तुसी शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण करोगे। शाम 5:30 का समा रहेगा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार दा। शाम 6:30 देहाती प्रोग्राम च काम दियां गल्लां ते सोनी मक्की दी काश्त बारे

0: दस्या जाएगा, संगीत रूपक भी होएगा, कल दे प्रोग्राम ते मौसम दा हाल भी दस्या जाएगा। 7:40 ते वगदे पानी, इस दे तहत वीरपाल कौर तो कविता पाठ सुनोगे। रात 8 बजे माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दे देशवासियां दे लई प्रसारण मन की बात दा पंजाबी रूपांतर मुड़ प्रसारित किया जाएगा। 8:45 ते यानी कि 9:45 समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ एट 9, 9:15 स्पॉटलाइट ते 9:30 अनुजूंग। जी हाँ, अनुगूंज प्रोग्राम दे विच पुरानियां रिकॉर्डिंग्स जिहड़ियां ने सुनवाईयां जाणगियां। 10 बजे का समय रहेगा रविवासिया अखिल पार्टी संगीत सभा का। 8:30 दे बाकी रहिंदे प्रोग्राम ते उहनां दा प्रसारण समा। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। एक जरूरी सूचना, रोजाना शाम 7:30 प्रसारित होने वाला खबरां दा बुलेटिन 1 जून तो 21 जून तक शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं।
1: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे 1:10 होने वाले ने, आओ हुण सुनदे हां प्रादेशिक खबरां बस कुछ पलां दे इंतजार बाद।

बिल्कुल फौजी वीरो, छुट्टियां दा मौसम शुरू हो गया है। छुट्टियां शुरू हो गई ने, जिथे बहुत सारे लोग अपने परिवारा नाल खुशियां दे पल बिता रहे ने, उथे तुसी अपने फर्ज नू पहल दे के देश दी सेवा दे विच डटे हुए हो। असी दिलों दुआ करदे हां कि तुसी भी जल्दी अपने घर जाण दा मौका हासिल कर सको, अपने मापिया, जीवन साथी, बच्चों ते प्यारे परिवार दे नाल हसण खेडन दे पल नसीब कर सको। तुहाडे घरां दीआं रौणकां मुड़ तुहाडी आमद दे नाल सज जाण ते तुहाडे चेहरियां दे खुशियां दी मुस्कान हमेशा बनी रहे।

0: फौजी वीरो प्रोग्राम जारी रहेगा फिर आवांगे 2 बजे ते पर हुन आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो समा हो गया है खबरां दा आओ सुनदे आ पहले 1:40 ते पंजाबी दे विच खबरां ते फिर 1:50 ते उर्दू दे विच बस कुछ कु पलां दा इंतजार
1: नमस्कार ये आकाशवाणी है खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं यादविंदर सिंह पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी उत्ते अपने प्रोग्राम मन की बात विच राष्ट्र नूं संबोधन करदियां देशवासियों नूं गंभीर गर्मी दे मौसम दौरान बेहद सावधानी वरतन अते सरकारी दिशा निर्देशों की पालना करन दी अपील की लैफ्टीनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने अज देश दे नवें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अते एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने समुद्री फौज के अगले मुखी वजों अपना अहुदा संभाल लिया है केंद्र सरकार ने कल तो शुरू हो रहे 15वें लई पेट्रोल डीजल अते हवाई ईंधन उत्ते बरामदी महसूल च सोध की है ते IPL क्रिकेट के फाइनल च अज अहमदाबाद विच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स नाल होवेगा हुण खबरां विस्थार नाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों नूं मौजूदा गंभीर गर्मी के मौसम दरमियान बेहद सावधानी वरतन अते सरकारी दिशा निर्देशों की पालना करन दी अपील की है आकाशवाणी उत्ते अपने मन की बात प्रोग्राम विच उन्होंने लोगों नूं घर तो बाहर निकलन तो पहला वध तो वध पानी पीण अते सूरज तो बचा करन लई सुरक्षा मापदंड अपनाउन दी अपील की है
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है तेज धूप गर्म हवाएं ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है पानी पीते रहिए धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि लस्सी सत्तू शरबत बेलपन्ना ते शरबत पीना गर्मी तो राहत पाने लिए लाभदायक ने उन्हें कहा कि ये पीने वाले पदार्थ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना और पीढ़ियां के तजर्बे को दर्शाते हैं प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा महाराष्ट्र के अल्फांसो गुजरात के केसर और पछमी बंगाल के हिमसागर अंब बारे गल करदिया कहा कि हर इलाके के अंब का स्वाद वखरा हुंदा है श्री मोदी ने अंब की खेती च शामिल किसानों के योगदान की भी शलाघा की उन्होंने कहा कि अंब की यह यात्रा हुण पिंड तो विश्व बाजार तक पहुँच रही है उन्हें कहा कि किसान खेतीबाड़ी ते अर्थचारे लिए बहुत खास ने
2: मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं बहुत विशेष हैं ऐसे ही छाए रहिए
1: प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड के अपने हालिया दौरे का जिक्र करदिया कहा कि नीदरलैंड सरकार ने चोल काल दियां प्राचीन तांबे दियां तख्तियां भारत नूं वापस कीतियां ने इस नाल दुनिया भर के तमिल भाईचारे च उत्साह पैदा होया है उन्होंने कहा कि यह तख्तियां चोल साम्राज्य की समुद्री शक्ति और दक्षण पूर्वी एशियाई देशों नाल इस दे संबंधां नूं दर्शाउंदियां ने
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश च एक नहर विचों गंगा डोल्फिन नूं बचाउण वाले वीडियो का भी हवाला दिता उन्हें कहा कि नमामे गंगा मुहिम तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डोल्फिन बचा एंबूलेंस ने इस विच अहम भूमिका निभाई है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लैफ्टीनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने अज कहा है कि विचारां ते कार्रवाई च नवीनता फौजी समर्था के विकास नूं अगे वधाएगी देश के नवे CDS वजो अहुदा संभालन तो बाद मीडिया नूं संबोधन करदिया जनरल सुब्रमणी ने कहा कि हथियारबंद बलां सनअतां अकादमिक संस्थावां स्टार्टअप्स अते खोज प्रणाली दरमियान वधेरे सहयोग आधुनिकीकरण लई सहाई होवेगा उन्होंने फौजियां मलाहां अते हवाई योध्यां दी बहादुरी ते पेशेवाराना योगता दी वी शलाघा की सबका फौजियों वीर नारियों की भलाई लिए हथियारबंद बलों की वचनबद्धता दोहरा

0: के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रिवायती अंदाज से बनाए जाते हैं।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: आम का तذکرہ करते हुए मौसम गर्मा के दौरान जिनकी अक्सर व बेशतर बात होती है, वज़ीर आज़म ने कहा कि हर खित्ते के अपने अपने आम हैं, अपनी अकसाम हैं और अपना जायका है। जनाब मोदी ने आम की काश्त में शामिल किसानों के रोल को भी सराहा और कहा कि आम का ये सफ़र अब गांव से आलमी मार्केट तक पहुँच रहा है। अपने मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने झारखंड के शहर रांची में हाल ही में मुनक़िदा नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन मुकाबलों का जिक्र किया, जहां तकरीबन 800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। जनाब मोदी ने मुख्तलिफ मुकाबलों में 4 नए कौमी रिकॉर्ड कायम करने पर गुरिंदर वीर सिंह, टी के विशाल, तेजस्विन शंकर, देवमीना और कुलदीप कुमार को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने एक वीडियो के बारे में भी बात की, जिसमें ये दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में दरियाए गंगा की एक डॉल्फिन को फंसने के बाद बचाया गया। जनाब मोदी ने इस बात का तذکرہ किया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इस कार्रवाई में अहम रोल अदा किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज ने मुल्क के मफादात का तहफ्फुज करने में हमेशा पेशावराना सलाहियत और कार्रवाई से मुतालिक फैसले करने की सलाहियत का मुजाहरा किया है और वह मुल्क के इक्तदार आला और इलाकाई सालमियत का दिफा करने के लिए अहदबस्ता हैं। मुल्क के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हैसियत से जिम्मेदारी संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए जनरल सुब्रमणि ने कहा कि अंदाज फिक्र और कार्रवाई में इख्तरा से फौजी सलाहियतों को फरोग हासिल होगा। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज बहरिया के 27वें सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्होंने एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की जगह ली है। कमान संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा कि मुल्क के मफादात का तहफ्फुज करने के लिए भारतीय बहरिया मुस्तैद और चौकस है और उसे इलाकाई सिक्योरिटी के ऐसे माहौल में सरगर्मी के साथ तैनात किया जा रहा है जो चैलेंज से भरपूर, पेचीदा, गैर मुतवक्के और गैर यकीनी की कैफियत वाला है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर के यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि पूरा मुल्क उनकी जहानत, दर्दमंदी और अवाम की फलाह बहबूद के तई गैर मामूली लगन के लिए उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ याद करता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ एटमी मामले पर समझौते के करीब पहुंच गया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये वार्निंग भी दी है कि अगर बातचीत नाकाम हो जाती है तो फौजी कार्रवाई एक मुतबादिल रास्ता रहेगा। एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि उनकी इंतजामिया की तरजीह इस बात को यकीनी बनाना है कि ईरान कभी भी एटमी हथियार हासिल न कर सके। जुनूबी दिल्ली में कल शाम साकेत मेट्रो स्टेशन के नज़दीक एक कमर्शियल इमारत के ढह जाने से 3 अफराद की मौत हो गई। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के मुताबिक मजमूई तौर पर 11 जख्मी अफराद को इलाज के लिए लाया गया, इनमें से 3 को मुर्दा करार दिया गया। इधर दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता आज जुनूबी दिल्ली में उस मुकाम पर गईं जहाँ ये वाकया पेश आया था। बैडमिंटन में सिंगापुर ओपन के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शुएबुल फिक्री और फजर अल्फियान की जोड़ी से होगा। क्रिकेट में आज आईपीएल 2026 का फाइनल गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार मुल्क के विरासती मुकामात को महफूज रखने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। जनाब मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे में चोला दौर की तांबे की कदीम तख्तियां भारत को वापस किए जाने को उजागर किया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने लोगों पर जोर दिया कि वो शदीद गर्मी के दिनों में अपना ख्याल रखें, रिवायती अंदाज से बनाए गए भारतीय मशरूबात को बढ़ावा दें। जनाब मोदी ने आम की मुख्तलिफ अकसाम को आलमी मार्केट तक पहुँचाने के लिए किसानों की सताइश भी की। दिफाई अमले के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा है कि भारतीय मुसल्ला अफवाज मुल्क के इक्तदार आला और

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक।

0: ਫੌਜੀ ਵੀਰੋ, ਹੁਣੇ ਸਹੀ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੌਜੀ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੜਿੰਗ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब। चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
2: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इस

0: में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
0: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जर्दालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
0: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास

0: समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचाने और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
1: नेवी, एयरफोर्स,
2: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
1: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोइबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी

0: की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। रंगली तैरती इस प्रोग्राम दे ले बस कुछ कु पलां दा इंतजार।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने तो बोल रहा।
2: फिर तो
3: तुसी डिजिटल अरेस्ट विचो दूजे कमरे विच जाओ। इकल्ले तुहाडे पार्सल विच ड्रग्स मिले हन, लम्मे अंदर जाओगे।
4: 10 लाख दियो बच जाओगे।
2: सर इन्हें कित्थों ले आवां?
4: एक लिंक भेजा है, उन्हें प्रोसेसिंग लई
3: 2 लाख भेजो, बाकी बाद विच।
2: सर 2 लाख
5: की होया पापा?
2: बेटा ये कह रहे हन मेरे पार्सल चो ड्रग्स मिले हन।
3: ओए
2: कट दिता।
5: घबरान दी लोड़ नहीं पापा, डिजिटल अरेस्ट जिहा कुछ नहीं हुंदा, ए सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, आरबीआई आदि दे नाम तो आउण वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जां वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्हां नूं कोई पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नूं रिपोर्ट करो। जे तुसी सियाणप नहीं विखाओगे
2: तां पैसे गवाओगे, आरबीआई कहिंदा है।
6: जानकार बनो, सुचेत रहो।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है जी प्रोग्राम रंगली धरती। अज दे इस प्रोग्राम दे विच आओ सुनते हैं निरंजन सिंह नूर टाडी ते उना दे साथियों तो प्रसंग गुरु नानक देव जी।
7: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛੱਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਲਿਖਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਆਖਿਰ ਸਦਾ ਤੌਹੀਦ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇ, ਹਿੰਦ ਕੋ ਇੱਕ ਮਰਦੇ ਕਾਮਲ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਖੁਆਬ ਸੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ, ਭਾਗਾ ਭਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਏ ਨੀ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਗਤ ਦਾ ਪੀਰ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੀ ਸਿਰੱਬੇ ਰਹੀਮ ਦੁਨੀਆ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੋਧਰੇ ਦਾ, ਭਾਗੋ ਜਿਹਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਖੀਰ ਆਇਆ। ਲਾਲੋ ਜਿਹੇ ਪਮਲਾਏ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵਹਾਵਣੇ ਧੀਰ ਆਇਆ। 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਾ ਕੇ ਦੋ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ।

सतगुरु जी का बचन मन के सालसराय जौहरी ने अपने घर दे विच धर्मशाला बनवाई अते रोजाना ही सत्संग करके अपने जीवन नू सफला कीता अते होरना नू भी सच दे नाल जोड़िया। इस तों बाद गुरु जी ने तीन उदासियां होर धारण कीतियां अते संसार नू तारिया। जिस कार्य लई गुरु जी ने अवतार धारिया सी उस कार्य नू पूरा कीता अते दुनिया नू नाम दे नाल जोड़िया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज आकाशवाणी दे अपने मन दी बात प्रोग्राम विच राष्ट्र नूं संबोधित करदिआं देशवासियां नूं गंभीर गर्मी दे मौसम दौरान बेहद सावधानी वरतण अते सरकारी दिशा निर्देशां दी पालन करन दी अपील कीती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय समुद्री फौज ने ऑपरेशन संदूर दे दौरान पूरी पाकिस्तानी समुद्री फौज नूं अपनी बंदरगाहां तक सीमित रहण लई मजबूत कीता सी। लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमण्यम ने अज देश दे नवे चीफ आफ डिफेंस स्टाफ अते एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने समुद्री फौज दे अगले मुखी वजों अपना अहुदा संभाल लिया है। केंद्र सरकार ने कल तो शुरू हो रहे पंद्रवाड़े लई पेट्रोल डीजल अते हवाई ईंधन ते बरामदी महसूल विच सोध कीती है। दक्षिणी दिल्ली दे साकेत मैट्रो स्टेशन नेड़े कल शाम एक चार मंजिला व्यापारक इमारत ढह जाण नाल तीन लोकां दी मौत हो गई। पंजाब राज अते चंडीगढ़ मनुखी अधिकार कमिशन वल्लों पंजाब दे सारे डिप्टी कमिश्नर दफ्तरां दे जिला पदरी कॉम्पलैक्स विच पंजाब राज मनुखी अधिकार कमिशन दी कोर कमेटी दे जिला दफ्तर खोले जाणगे। महाराजा रणजीत सिंह आर्मड फोर्सिस प्रैपरेटरी इंस्टीट्यूट MSS नगर दे पांच साबका कैंडिडेट पुणे दे खड़रवासला स्थित वकारी कौमी रक्षा अकैडमी तो ग्रेजुएट हुए ने। मौसम विभाग ने अज अते कल लई पंजाब हरियाणा अते चंडीगढ़ दे वख-वख हिस्सों विच गरज धमक नाल तेज हवावां चलन संबंधी येलो अलर्ट जारी किया है। IPL क्रिकेट दे फाइनल विच अज अहमदाबाद विच शामी 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु दा मुकाबला गुजरात टाइटन्स दे नाल होवेगा। ये सन हुण तक दे मुख समाचार। DTH दी AR पंजाब सेवा दा इह जलंधर केंद्र है। दिन दे 3 वज चुके ने, आओ शुरू करदे आं तुहाडा अपना प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां, ते मैं हाँ तुहाडी दोस्त ते होस्ट चेतना। तुसी सुन रहे हो अपना प्यारा प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां, जिथे गीत भी दिल दे हुंदे ने ते गल्लां भी दिलों निकलदियां ने। कदे कोई चिट्ठी मुस्कान दे जांदी है ते कदे कोई गीत पौराणियां यादां दे जांदा है। तां चलो अज दे इस सोहणे सफर दी शुरुआत करदे आं एक खूबसूरत जिहे गीत नाल। आओ सुनदे आं जस्सी सिद्धू।

लो जी दोस्तों, हुण तां पूरी मस्ती वाली फील आ गई है। कदे कदे बिना वजह भी खुश होना चाहिदा है। जिंदगी उही सोहणी लगदी है जिथे हासे दी आवाज भी आंदी होवे। चलो जी, हुण समा हो गया है साडी अगली चिट्ठी पढ़न दा जी। आज सानू अगली चिट्ठी आई है जी, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथलेश, तारनी, सूरज, ज्योति और बाबू रियाज ठाकुर, मुक्तसर तो बब्बू सिंह, बलजिंदर कौर, रवनीत, निशु, भुपिंदर, गांधी चौक रोपड़ पंजाब तो हरदेव मिक्का, बलविंदर, जतिन मिक्का बिरक, पिंड भंगाला जिला फाजिलका तो जगतार गिल, गुरमीत गिल, नाजम गिल, सुखमन गिल, कमलदीप, एस के शर्मा, जगतार टेलर। इन्हों सब की फरमाइश से सुनद अगला गीत।

कुछ गीत होले होले दिल विच उतर जांदे ने, बिल्कुल इस गीत वांग। दिल नाल जुड़ियां चीज़ां दी गल वक्री हुंदी है दोस्तो, वह हमेशा कोल महसूस हुंदियां ने। जे तुसी भी अपने दिल दियां गल्लां, अपनी फरमाइशां जां अपने पुराने सुनेहे साढ़े तक पहुँचाना चाहते हो तो सानू चिट्ठी जरूर लिखो। साडा पता नोट कर लो, मार्फा स्टेशन ट्रैक्टर, ऑल इंडिया रेडियो जलंधर। अपना नाम, पसंद आ गीत ते उहदे सिंगर दा नाम लिखना बिल्कुल नहीं भुलना। चलो पढ़ते हैं अगली चिट्ठी जो सानू लिखी है गिदड़बाहा तो मनजीत।

0: तनेजा, परवीन, पायल, बेबी हनीशा, बेबी कैरवी, जमशेदपुर तो हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, पप्पी, नवीन ते सारा ही भाटिया परिवार, डब्बवाली हरियाणा तो जीके बगोतला, सुनीता, संजय, अनिल, मीनू। आओ सुनते हैं इन्हें समरी फरमाइश ते अगला गीत।
1: Gurmeet Singh, Kaleerkant, with Rajiv in the keys.

दोस्तों, मैनू लगदा है दिल दी गल कह ही देनी चाहीदी है, क्योंकि चुप रह के कई वारी दूरियां वध जांदियां ने। जो दिल च है वो कह दिओ, रिश्ते अपने आप नेड़े आ जांदे ने। इस दे नाल ही पढ़दे हां अगली चिट्ठी जो सानू पहुंची है फतेहगढ़ साहब तों, रामनाथ, सुखमनजीत, सहजप्रीत कौर, बठिंडा तों हरजिंदर, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सैक्टर 67, मोहाली, चंडीगढ़ तों टी डी मल्होत्रा, रितिक, प्रतीक, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका तो सुभाष चंद्र बजाज, साहिल ते सारा ही बजाज परिवार। आओ सुनते हैं इन्हां दी सारे दी फरमाइश ते अगला गीत।

प्रोग्राम चल रहा है जी चिट्ठियां मिठियां। दोस्तों तुहाड़ियां चिट्ठियां ही इस प्रोग्राम की असली ताकत है। जिन्ना प्यार तुसी सानू दिंदे हो उन्ना ही सफर सोना बन जांदा है। जे तुसी भी अपने मन दियां गल्लां फरमाइशां जां सुनेहे साढ़े तक पहुँचाना चाहते हो तो सानू वध तो वध चिट्ठियां लिखिया करो। तो अपने आस पास वालियां नू भी क्या करो कि चिट्ठियां रेडियो ते भेजिया करन। रेडियो नाल जुड़न का सब तो वधिया तरीका है। शब्दां नाल जुड़दे ने दिल इत्थे, इसे लिए चिट्ठियां अज भी खास लगदियां ने। तुसी भी अपने चिट्ठियां भेज सकते हो। साडा पता एक बार फिर नोट कर लो। पता है जी मार्फत स्टेशन डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो जलंधर। चलो चलते हैं अगली फरमाइश वल। अगली फरमाइश आई है सानू पिंड नथाणा जिला बठिंडा तो हरजिंदर छिंदा जसवीर रेखा गगन सोनी सीता गीता कनेरा मोहल्ला पटियाला तो मुकेश नीलम नितिन पलक करण गीत ते वंश तरन तारण तो सुनीता गुरदर्शन लाल रजनी आकाशदीप। आओ सुनते हैं सनत भी फरमाइश ते अगला गीत।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिकता भी।
3: बंदरगाहां तक सीमित रहने के लिए मजबूर किया। केंद्र सरकार ने कल तो शुरू हो रहे पंदरवाड़े लिए पेट्रोल डीजल अते हवाई ईंधन दी बरामदी मैसूर विच सोध की है। दक्षिणी दिल्ली दे साकेत मेट्रो स्टेशन नेड़े कल शाम एक चार मंजिला व्यापारक इमारत टह जाने दे नाल तीन लोगों की मौत हो गई है। महाराजा रंजीत सिंह आमर्ड फोर्मिज पेपरोट्री इंस्टीट्यूट SAS नगर दे पांच सबका कैडिट पुणे दी खड़कवाला स्थित वारकी कौमी रक्षा अकेडमी तो ग्रेजुएट हुए ने। मौसम विभाग ने आज अते कल लई पंजाब हरियाणा अते चंडीगढ़ दे वख-वख हिस्सियां विच गरज चमक दे नाल तेज हवावां चलन लई येलो अलर्ट जारी किया है। IPL क्रिकेट दे फाइनल्स दे विच आज अहमदाबाद विच शामी 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दा मुकाबला गुजरात टाइटन्स दे नाल होवेगा। ई सन हुन तक दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। 4:02 हुए ने। हुन पेश है प्रोग्राम सिरजना। अज दे इस प्रोग्राम दे विच तुसी गुरतेज सिंह कुहारवाला दे नाल कीती सुखजिंदर सिंह होना दी गलबात सुनोगे।

तप तप लुह लुह हाथ मरोरो, बावल हुई सो सौ लोरो। ए बिरहों पे जे बोल बाबा फरीद जी दे श्री मुख चो उचारित ने, जो प्रभु प्रीत दी परबल तांग रखन वाली जीव रूपी स्त्री दे हिरदे दी वेदना है। मिलाप दी बात बाणी विच ते नता प्रति अरदास विच इंज हुंदी है। सेई प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम चित आवे, नाम नू चेते करौन वाली सखी गुरमुख जन संत जन प्रभु नाल प्रीत स्थापित करन विच सहाई हुंदे हन। इसे करके जीव रूपी स्त्री दी बेनती हुंदी है, से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। श्रवण करदे हां भाई भगवंत सिंह होरां वल्लों गायन कीता ये शब्द।

संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। इस शब्द गायन कीता सी पाई भगवंत सिंह होरा। गुरमत अनुसार सच्ची प्रीत, उत्तम प्रीत उस प्रभु नाल प्रीत है। दुनियावी प्रीता एक पासड़ हुंदिया ने, जिमें मच्छी दी पानी नाल तां प्रीत है, पर पानी दी मच्छी नाल नहीं। पमरे दी फुल नाल तां प्रीत है, पर फुल दी पमरे नाल प्रीत नहीं है। पर प्रभु प्रीत जीव रूपी स्त्री वालों प्रभु नाल भी प्रीत है, ते प्रभु भी अपने प्यारे जना नूं प्रेम करदा होया कंठ नाल लौंदा है। ताही तां सदैव प्रभु नाल मिलाप दी प्रीत इन्हां वडभागे हिरदियां विचों उपजदी रहिंदी है। प्रभ मिल बे कौ प्रीत मन लागी, पाए लगो मोहे करो बेनती, को संत मिले बड़ पागी। सरवण करदे हां भाई गुरमीत सिंह।

0: रागी जत्थे ने। आओ हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी परमजीत सिंह।
1: गौड़ी महला पंजवां। प्रभ मिलबे कौ प्रीत मन लागी, पाए लगों मोहे करूं बेनती, को संत मिलै बडपागी, रहाओ मन अर्पों धन राखों आगै, मन की मत मोहे सगल त्यागी, जो प्रभ की हर कथा सुनावै, अन दिन फिरों तिस पिछै वैरागी, पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे, भेट्यो पुरख रसक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। यह पावन शब्द शहीदां दे सिरताज साहब श्री गुरु अर्जन साहब जी दे पावन मुखार बिंद तो उचारण किया होया है। अते श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पवित्र अंग 204 ते राग गौड़ी विच शोभनीक है। शब्द दे केंद्री भाव रहाओ वालियां अमृत पंक्तियां विच गुरु साहब जी ने प्रभु प्यार विच बेहबल होई निमाणी जिंद दी वेदना नूं बयान कीता है। जिवें एक प्यासा व्यक्ति पानी दी इच्छा रखदा होया व्याकुल हुंदा है, उन्नी देर उस दी प्यास दूर नहीं हुंदी जिन्नी देर तक उसनू पानी नहीं मिल जांदा। इसे तरह जिस प्राणी नू प्रभु दर्शना दी प्यास लग जावे ओ भी व्याकुल हो के प्रभु दे प्यार विच अरजोइयां करदा है। अमृत शब्द दियां रहाओ वालियां पंक्तियां हन, प्रभ मिलबे कौ प्रीत मन लागी, पाए लगो मोहे करों बेनती, को संत मिलै बड़ पागी, रहाओ परमात्मा नू मिलन वास्ते मेरे मन विच प्रीत पैदा हो गई है। परमात्मा नाल मिला सकन वाला जे वड्डे भागां वाला गुरु संत मैनू मिल पए तां मैं उस दे पैरीं लगां। मैं उस अगे बेनती करां कि मैनू परमात्मा नाल मिला दे। इस अवस्था दा वर्णन करदिआं होइआं गुरु अर्जन साहब जी ने बाणी विच इक पावन शब्द दृढ़ करवाया है। पातशाह जी दे बचन हन, कोई जन हरस्यों देवै जोर, चरण गहों बकों शुभ रसना, दीजह प्राण अकोर, रहाओ मन तन निर्मल करत क्यारो, हर सिंचै सुधा संजोर, ए रसमह मगन होत कृपा ते, महा बिखिया ते तोर। गुरु साहब जी फरमान करदे हन, मन अर्पों धन राखों आगै, मन की मत मोहे सगल त्यागी, जो प्रभ की हर कथा सुनावै, अन दिन फिरों तिस पिछै वैरागी। सतगुरु जी फरमाउंदे हन कि मैं अपना मन उस दे हवाले करदियां, मैं अपना आप उस दे अगे रख दियां, मैं अपने मन दी सारी चतुराई छड़ दियां, जेकर कोई मैनू प्रभु नाल मिला दवे, उस दे घर दियां कथा कहानियां सुना देवे। दरअसल पदार्थां दा मोह मनुख नू संसार विच हंकारी बना दिंदा है। दुनियावी प्रभता दे नींद विच सुत्ता होया मनुख सब कुछ अपना समझ के परमात्मा नू भुला बैठदा है। जो असल मकसद प्रभु भगती करन वाला सी उस नू अपने अंदरों विसार दिंदा है। प्रभु दर्शना दी प्यास ने मनुख दे अंदर यह समझ पैदा कर दिती कि इत्थों दे दुनियावी पदार्थ किसे काम नहीं। इसलिए सतगुरु जी फरमाते हैं कि जे सतगुरु रहमत करे प्यारे प्रीतम नाल मेरा मिलाप करवा देन तां मैं सब कुछ कुर्बान कर देवां। विचार अधीन शब्द विच

अब मिलबे कौ प्रीत मन लागी, पाए लगौ मुहे करौ बेनती, को संत मिलै बड़ पागी। इस शब्द गायन कीता सी पाई गुरमीत सिंह शांत ते उन्हें

जगमग नूर है, तिनाल ही विच संगत हर प्रभ वसै जियो। अर्थात वडभागे प्राणी सतसंगत विच जाके प्रभु प्राप्ति दा निवेकला टंग जनजुगत हासिल कर लेंदे ने, क्योंकि उन्होंने गोबिंद प्रभु नाल प्रीत स्थापित करना ही पौंदा है। गोबिंद प्रीत लगी अत प्यारी, जब सत्संग पए साधु जन, हिरदय मिलिया सांत मुरारी। सरवण करदे हां भाई हरबंस सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

गोबिंद प्रीत लगी अत प्यारी, जब सत्संग पए साधु जन हृदय मिलिया सांत मुरारी। इस शब्द का गायन कीता सी भाई हरबंस सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज़ ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
3: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
3: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
2: आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। PM स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति दी है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को PM स्वनिधि के ऋण चेक और QR कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे।

0: जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 की हालत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: सिर्फ 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से ये आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। पेश है आज रात तक प्रसारित होने वाले प्रोग्राम की जानकारी और उन्हों का प्रसारण समा।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: सब में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश की अनमोल विरासत को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रही है। उन्होंने यह खुलासा भी किया कि ज्ञान भारत मुहिम के हिस्से वजों छत्तीसगढ़ के मल्हार विच पांडू राजवंश के महारिषि बलार्जुन नाल संबंधित 6वीं 7वीं सदी दीआं 3 दुर्लभ तांबे दीआं प्लेटां मिलीआं ने। प्रधानमंत्री ने झारखंड की राजधानी रांची विच आयोजित राष्ट्रीय सीनियर अथलैटिक्स फैडरेशन चैंपियनशिप बारे गल की। इस चैंपियनशिप में लगभग 800 अथलीटा ने हिस्सा लिया। श्री मोदी ने गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना ते कुलदीप कुमार नू राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़न लई वधाई दी। उन्होंने गुरिंदर वीर सिंह ते अनिमेश कुजूर नाल गल भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: मोदी ने देशवासियों को अपील की कि वह अपने आले दुआले के समाज की बेहतरी लिए लगातार काम कर रहे लोगों की शलाघा कर, आप भी चंगे कामों में शामिल हो। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अज 8वीं 10वीं ते 12वीं जमात समेत पंजाब भर के चोटी दीआं पोजिशन हासिल करने वाले विद्यार्थियों नाल मुलाकात की। इन्हां विद्यार्थियों ने आपो अपने जिलों ते पूरे राज विच चोटी दीआं पोजिशन हासिल कीतीआं ने। मुख्यमंत्री ने इस मौके बोलदिआं पंजाब दी सिक्ख्या प्रणाली विच हो रहे महत्वपूर्ण सुधारां ते खुशी प्रगट की। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी मुकाबले वालियां सख्त ते चुनौतीपूर्ण प्रीख्यावां सफलतापूर्वक पास कर रहे ने।
4: सारे पंजाब दे 8वीं 10वीं ते 12वीं दे टॉपर बच्चे सी, उन्हां नूं मिलन दा मौका मिले है, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट दे विच ते पंजाब दे विच टॉप कीता है। ते साडी जिहड़ी एजुकेशन प्रणाली पंजाब दे विच जो बहुत वड्डे सुधार वल जा रही है, ते अचीवमेंट्स जिहड़ियां कीतीआं ने, केरला नूं पछाड़ के पंजाब पहले नंबर ते आया है। नीति आयोग दा इह डाटा जिहड़ा पिछले दिन जारी होया, बहुत खुशी है कि साडे सरकारी स्कूलों दे बच्चे जिहड़े ने उह बहुत वड्डे वड्डे औखे औखे टफ एग्जाम जिहड़े ने उह क्लीयर कर रहे ने। तो मैं सारे पेरेंट्स नूं, सारे टीचर्स नूं, सारे उन्हां दे
1: केंद्रीय रेल राज मंत्री रमनीत सिंह बिट्टू ने अनुसूचित जातां बारे अपने हालिया विवादित बयान नूं लैके सफाई दित्ती है ते सर्वजनक तौर ते माफी मंगी है। अमृतसर हवाई अड्डे ते मीडिया नाल गलबात करदे श्री बिट्टू ने कहा कि उन्होंने मूँह चो निकले कुछ शब्दों कारण जे किसी भाईचारे के लोगों को ठेस पहुंची है तो वह दिलों अफसोस प्रगट करते हैं, तो अजिही सावधानी वरतणगे कि भविख में अजिही गलती दोबारा ना होए।
5: गल सिर्फ इन्नी हुई जदों एड्डी बड़ी बहस चल रही सी ते उस वेले जिहड़े लफ्ज़ निकले, पर वह लफ्ज़ ने जिहड़े वह बिल्कुल मैनू नहीं कहने चाहिए सी। मैं उन्हां तों भी माफ़ी मंगदा कि कोई भी मन च ऐसी गल कदे आउणी नहीं चाहीदी, ते मैं यह भी कोशिश करूँगा अगली बार भी एक कदे भी इह जी गल होवे ना।
1: उन्होंने कहा कि जे कोई कमीशन या संबंधित अथॉरिटी उन्होंने तलब करती है तो वह आप हाजिर होकर अपना पक्ष रखणगे, तो लोड़ पैण ते लिखती रूप में माफ़ी भी मंगणगे। मंत्री ने कहा कि उन्होंने कभी भी एससी ओबीसी हिंदू सिख या किसी होर वर्ग को नीवा दिखाने की कोई इरादा नहीं सी। पंजाब की कानून व्यवस्था बारे गल करदे रणजीत सिंह बिट्टू ने कहा कि राज विच गैंगस्टरवाद और अपराधिक गतिविधियां चिंता का कारण ने। पंजाब राज अनुसूचित जाति कमिशन के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने अज फिलौर इलाके के वक् वक् पिंडों का दौरा किया। उन्होंने पिंडों के समूह भाईचारे के लोगों दशकों से मंगा सुनिया, मौके से संबंधित अधिकारियों जल्दी तो जल्दी ढुकवा हल कर निर्देश दिए। श्री गढ़ी ने कहा कि यह दौरा समुचे भाईचारे के हित में किया गया है, तो प्रशासन तालमेल करके उन्होंने समस्यावान का योग हल किया जा सके। तंबाकू के खतरों विरुद्ध जागरूकता पैदा करने लिए आज विश्व तंबाकू रहित दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन विश्व सेहत संगठन वालों तंबाकू की वरतों खत्म करने लिए एक विश्वव्यापी पहल है। इस दौरान भारत सरकार के सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय वालों करवाए गए कौमी परिवारक सेहत सर्वेक्षण 2023-24 अनुसार पंजाब ने देश भर चो तंबाकू सेवन के सब तो घट मामलों नाल जनतक सेहत में एक महत्वपूर्ण सफलता दर्ज की है। पंजाब के सेहत ते परिवार भलाई

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से ये आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। शाम दे 6:30 होए ने। पेश है देहाती प्रोग्राम।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: हाँ जी संधु साहब बच्चों वाले गल है भी खेतीबाड़ी दे विच आ समा जिद्दां आपां कहिंदे आ कि मक्की एक ऐसी फसल है जिहड़ी बदल है साडे कोले।
1: हाँ
0: जदों आपां कणक झोने की गल करदे हाँ अपने दुआबे दे विच तां खैर बहुत कामयाबी नाल मक्की उगाई जांदी है, या आपां इह हुशियारपुर दा इलाका है इह इलाके दे विच वी मक्की
1: बहुत
0: बड़ी
1: मंतवी फसल है
0: बहुत
1: जी।
0: मंतवी। हुण तां इहदियां किस्मां इन्नियां आ गईयां है, बेबी कॉर्न है, पर्ल पॉपकॉर्न है, इहो जिहियां किस्मां है जिन्हां 'च वपारक समर्था बहुत ज़्यादा है। सो इस करके सानू हुण देखो इस आपां नूं थोड़ा जिहा मक्की नूं सुकाउण दा जिहड़ा है उहदे लई ड्रायर है जिहड़ी उह वी उपलब्ध है
1: आ गए जी,
0: ना, सरकार
1: लागे
0: वी मदद
1: मंडियां लाते हैं।
0: लाते है। सो इस करके संभावना बहुत है। डॉक्टर मनिंदर सिंह बौंस होरां कोल जानकारियां साझियां कीतियां मक्की की काश्तकारी दे बाबत, आपां साझियां करते हैं।
2: सत श्री अकाल जी, मेरा नाम डॉक्टर मनिंदर सिंह बौंस, सहयोगी निदेशक सिखलाई कृषि विज्ञान केंद्र बाहोवाल हुशियारपुर। मैं अज आप जी दे नाल सौनी दे विच एक अहम फसल मक्की है उहदी काश्त बारे तुहाडे नाल विचार सांझे करूँगा। तो इहदे विच जिहड़ी अहम गल है कि मक्की दी काश्त फसली विभिन्नता दे विच एक अहम रोल अदा करदी है, उहदे वास्ते सरकार वल्लों भी बहुत उपराले कीते जा रहे ने। पिछले साल भी पंजाब सरकार वल्लों 6 ज़िलों दे विच पायलट प्रोजैक्ट दे रूप दे विच मक्की दी फसल नूं उत्साहित कीता गया सी, ते इस वार भी इस प्रोजैक्ट नूं अग्गे वधांदे होए जिले पंजाब दे 16 ज़िलों दे विच मक्की दी काश्त नूं झोने दे बदल दे वजों प्रफुल्लित करन लई इह प्रोजैक्ट लॉन्च कीता गया, जिहदे विच कि सरकार वल्लों प्रति हैक्टेयर 2.5 किल्लियां पिछे 17,500 सबसिडी दित्ती जा रही है, जिहदे विच बीज खाद दवाइयां दे बिल जिमीदार भरा बुकिंग करा के पोर्टल दे उपर खेतीबाड़ी महकमे ते बिल सबमिट करके ये सबसिडी का फायदा लै सकते हैं। तो हुण जे आपां हुण मुड़ दे दुबारा उस विषय ते आईए कि मक्की क्यों अहम आ, मक्की दी काश्त दे विच ध्यान देण योग गल्लां की ने, फसल दी तैयारी, खेत दी तैयारी, किस्मां दी चोण, खादां दी वरतों, कीड़े बीमारियों की रोकथाम, नदीना का प्रबंध, तो उहदे बारे आपां विस्थार नाल गलबात करांगे। तो जे आपां रकबे की गल करिए तकरीबन 87,000 हैक्टेयर रकबे ते मक्की दी काश्त हुंदी आ,

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर। एंड मैं पार्टिसिपेट किया, मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
0: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
2: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में उत्सुकता पैदा की है। उन्होंने कहा कि देश में खगोल विज्ञान तेजी से प्रसिद्ध हो रहा है। श्री मोदी ने नौजवानों अपन छुट्टियों दौरान खगोल विज्ञान क्लबों में शामिल होने प्लैनेटेरियम का दौरा करने की भी अपील की। विज्ञान ते तकनोलॉजी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12 साल के तकनीकी बदलाव दौरान भारत तकनोलॉजी लैण वाले की थां एक तकनोलॉजी आगू वजों उभरिया है। उन्होंने एक गल आज दूरदर्शन न्यूज़ नाल एक पॉडकास्ट विच कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत तेजी नाल आलमी तकनोलॉजी विकास विच हिस्सा ले रहा है ते नवीनता राही भविख नूं आकार दे रहा है। अत्याधुनिक तकनोलॉजी के खेत्र में भारत के वाधे कद का हवाला देंदया उन्होंने कहा कि देश ने पुलाड़, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी वर्गे खेत्रों में महत्वपूर्ण तरक्की की है। नवनियुक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा कि नवीनता को शामिल करने से फौजी समर्थाओं के विकास में तेजी आएगी। देश के नवे CDS वजों अहुदा संभालण तों बाद मीडिया को संबोधन करदे उन्होंने कहा कि हथियारबंद बलों, उद्योग, सिक्ख्या जगत, स्टार्टअप्स और खोज प्रणाली विचकार तालमेल आदि आधुनिकीकरण को अगे वधाएगा। जनरल सुब्रमणी ने कहा कि हथियारबंद फौजा ने अपने कार्यों को उनके सिटे तक पहुँचाने में अपनी पेशेवर योग्यता और कुशलता का प्रदर्शन किया है और वह राष्ट्र की प्रभुसत्ता और अखंडता की रक्षा लिए वचनबद्ध ने। जनरल सुब्रमणी आज सवेरे नवी दिल्ली के साउथ ब्लॉक विखे गार्ड ऑफ ऑनर दिता गया। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने अज समुद्री फौज के 27वें मुखी वजो अहुदा संभाल लिया है। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की थान ली है। ये खबरां तुसीं आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRN न्यूज जलंधर। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 7 सैलानी है, छत्तीसगढ़ का एक ड्राइवर शामिल है। यह हादसा 29 मई की रात को चूरा साहब डिवीजन के बैरागढ़ सच पास किलार सड़क से उस समय वापरिया जदों एक कार खड्ड में डिग पई। पुलिस ने हादसे के कारणों का पता लाने लई जांच शुरू कर दिती है। दिल्ली के साकेत मैट्रो स्टेशन नेड़े एक 4 मंजिला व्यापारिक इमारत के ढह जाने कारण मरण वाले की गिनती 5 हो गई है। दिल्ली नगर निगम के दक्षणी जोन के डिप्टी कमिश्नर अनुसार 2 इंजीनियरों को तुरंत प्रभाव नाल मुअत्तल कर दिता गया है। डिप्टी कमिश्नर वालों जारी एक आदेश में कहा गया कि इमारत का निरीक्षण करने में लापरवाही वरतने लई एक सहायक इंजीनियर और एक जूनियर इंजीनियर को मुअत्तल कर दिता गया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल सैंसिज एम्स के अनुसार 13 पीड़ितों जयप्रकाश नारायण एपैक्स ट्रामा सेंटर में इलाज लिया गया। उन्होंने 5 को पहुंचने पर मृतक ऐलान दिया गया जदों के 5 होरों की हालत गंभीर है, उन्होंने इलाज चल रहा है। बाकी 3 मरीजों इलाज तो बाद छुट्टी दे दी गई। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों हवाई फौज के जहाज़ राही दिल्ली तो मंगोलिया भेजा गया है। अजय भारतीय फौज के मित्र देशों नाल सभ्याचारक संबंधों को मजबूत करने की कोशिशों तहत किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के सीनियर अधिकारी राजीव कृष्णा को राज का नवा पुलिस डायरैक्टर जनरल नियुक्त किया है। इस नियुक्ति नाल वो 2022 तो बाद राज के पहले स्थाई पुलिस मुखी बन गए हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बीती रात तो लगातार हो रही बारिश कारण केदारनाथ यात्रा अस्थाई तौर पर मुलतवी कर दी गई है। मौसम विभाग वालों ऑरेंज अलर्ट जारी करने तो बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखदिया यह फैसला लिया गया है। बैडमिंटन में भारत की सात्विक साई राज रंकी रैडी और चिराग शैटी की जोड़ी ने अज सिंगापुर ओपन में पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में मुहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर अल्फियान की इंडोनेशियाई जोड़ी 18-21, 17-21, 16 हरा के 2 साल में अपना पहला खिताब जितया। भारतीय जोड़ी ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन जितया। IPL क्रिकेट के फाइनल में अज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स नाल हो रहा है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने टॉस जीत के पहला गेंदबाजी करने का फैसला किया है। मौसम विभाग ने 4 जून तक पंजाब, हरियाणा ते चंडीगढ़ के वख-वख हिस्सों में गरज चमक नाल तेज़ हवावां चलण संबंधी

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। हुणे तुसीं सुन रहे सी प्रोग्राम वगदे पाणी, कविता पाठ कर रहे सी वीरपाल कौर। आओ सुनदे हां गज़ल जगजीत सिंह हुणां दी।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1 ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लग दी है, मुबारका फेरते। पर किते उन्होंने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गलता नहीं कही? जे कही है तो फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि आजकल ए ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मांगदे।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाए। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
1: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, FM 102.7 मेगा हर्ट्स, DTH दी AIR पंजाब सेवा, DRM 864 किलो हर्ट्स, 103.6 मेगा हर्ट्स अमृतसर, 100.9 मेगा हर्ट्स अते

0: करता है। तंबाकू कारण कैंसर, दिल ते फेफड़े नाल जुड़ियां कई गंभीर बीमारियां पैदा होंदियां ने। इस मौके ते लोकां नूं तंबाकू तो दूर रहन ते सेहतमंद जीवन अपनाउण दा संदेश दित्ता जा रहा है। इस दिहाड़े ते अपने विचार रखदे होए
1: मैं डॉक्टर पंखड़ी कमल जलंधर डिस्ट्रिक्ट दे विच बतौर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्टिड हाँ। अज वर्ल्ड नो टोबैको डे दे उत्ते मैं सारिआं नूं ही इह जानकारी देना चाहवांगी कि टोबैको जदों असीं गल करदे हाँ साडे जहन दे विच आंदा है कि सिगरट पीण दे नाल टोबैको साडे शरीर दे अंदर जांदा है। बट इत्थे गौर करन वाली गल इह हैगी है कि अज दी डेट दे विच टोबैको जो है उह सिर्फ ते सिर्फ सिगरट पीण दे नाल ही सीमित नहीं रह गया होया है। अज जो सब तो ज़्यादा प्रचलित चीज़ है उह है वेपिंग, जो कि यूथ दे विच, जो साड़ी नौजवान पीढ़ी है उदे विच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और यूथ नू पता भी नहीं है कि किस तरीके दे नाल जिहड़ी वेपिंग है जो कि वक्रे वक्रे फ्लेवर्स दे विच मौजूद है और इंडस्ट्री बहुत ही स्मार्टली उनू बहुत कॉमन कर चुकी है, वो किस तरीके दे नाल साड़ी सेहत वास्ते किन्नी कहानीकारक है। टोबैको दी जे आपां गल करिए सानू सब नू लगता है कि टोबैको दे नाल जिहड़ा हैगा उह लंग्स दा कैंसर हुंदा है, पर इदां नहीं है। टोबैको साडी बॉडी दे विच कोई भी इस तरीके दा साडा सिस्टम नहीं है जिहनू प्रभावित ना करदा होवे। जिद्दां मैं वेपिंग दी गल कीती उदां ही टोबैको दे पाउचिज भी अजकल जिहड़े मार्केट दे विच मिलदे है जो कि बहुत सारे ब्रांड्स दे नाम तो बहुत ईजीली अवेलेबल है। और सब तो वड्डी गल इह हैगी है जो कि दुख वाली गल भी है और एक तरीके नाल उनू देख के हसी भी आउंदी है कि कोई भी टोबैको प्रोडक्ट दे उत्ते जिहड़ा वार्निंग तो बगैर नहीं आंदी, पर फिर भी आपां वार्निंग पढ़ के भी वार्निंग हुंदी है कि टोबैको कॉजेस कैंसर उनू देखदे हुए भी आपां उहदा यूज जिहड़ा हैगा उह बड़ा कॉमनली हो रहा हैगा। सो मैं जो पाउचेस दी गल कर रही सीगी उनू मूंह च रख के जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। सो उहदे नाल ओरल कैंसर जिहड़ा हैगा वो होने का जिहड़ा खतरा हैगा वो कई गुणा बढ़ जाता हैगा। इहदे नाल नाल बाकी भी जिहड़ी साडी ओरल हैल्थ हुंदी है, मीन साडे मूंह की जिहड़ी देखभाल हुंदी है वो सारी तरीके नाल खराब हो जाती है। दंदा का झड़ना, दंदा के रोग, जीभ के रोग, मूंह के बाकी किस्म के रोग। उहदे बाद जे आपां गल करिए पेट दे जिन्ने भी रोग हुंदे ने उहदे विच जिहड़ा हैगा खाने दा प्रॉपरली ना पच पाना यह भी टोबैको दे कारण हुंदा हैगा। लंग्स दा ते सानू सारिआं नूं ही पता है लंग्स दे कैंसर दा जिहड़ा एक प्रमुख कारण हैगा वह टोबैको हैगा। इहदे नाल नाल एक यह भी सानू सारिआं नूं पता होना चाहिदा है कि टीबी भी उहनां नूं ज़्यादा अटैक करदी है जिन्हां नूं जो कि टोबैको दा यूज करदे, जो सिगरेट पींदे ने या टोबैको नूं किसी भी तरीके नाल अपने शरीर दे अंदर उहदा सेवन करदे ने। इस तों इलावा जे आपां गल करिए हार्ट दी, दिल दे रोगां दे विच वी टोबैको दा बहुत वड्डा रोल हुंदा है क्योंकि टोबैको यूज दे नाल जिहड़ी साडे दिल दीआं जिहड़ियां नाड़ां हुंदीआं उह सिकुड़ जांदीआं, जिहड़ा साडे बॉडी दे विच ब्लड दा फ्लो हुंदा उह जिहड़ा उह सारा गड़बड़ा जांदा हैगा। उहदे नाल बाकी भी जिहड़ी साडी हैल्थ दीआं कॉम्प्लीकेशनस ने उह आंदीआं ने। इस तों इलावा जे आपां गल करिए अजकल बहुत कॉमन है बांझपन, इनफर्टिलिटी मेल्स च ते फीमेल्स च, मीनस बंदियां ते औरतां दोवां दे विच। और इनफर्टिलिटी दा एक बहुत मुख्य कारण जिहड़ा हैगा बंदियां च ते औरतां दे विच टोबैको दा सेवन बहुत ज्यादा वध चुकिया है जिहदे करके इनफर्टिलिटी दे केसिस भी बहुत वध रहे ने। इहदे नाल नाल लिवर दा खराब होना उहदा भी एक प्रमुख कारण जिहड़ा टोबैको है। टोबैको साडे शरीर नूं हर तरीके नाल प्रभावित करदा है और इनू छड़ना ही सेहतमंद जिंदगी दे वल चलन दा एक तरीका हैगा। सो आज वर्ल्ड नो टोबैको डे दे उते मैं सारयां नूं अपील करांगी कि इस बुरी आदत नूं जरूर छड़ो क्योंकि ए तुहाडी सेहत नूं हर तरीके दे नाल खराब कर रहा है।
2: मैं डॉक्टर मुकेश वालिया जलंधर तों, हर साल 31 मई नूं दुनिया दे विच नो टोबैको डे अवेयरनेस डे मनाया जांदा है। इसका मतलब है कि असी सारे जाने समाज दे विच दुनिया दे विच लोकां नूं जागरूक करदे हां कि तंबाकू दा सेवन नहीं करना, तंबाकू दी वरतों नहीं करनी। तंबाकू दी वरतों क्यों नहीं करनी, एक बहुत वधिया अपने आप दे विच सवाल है। सानू सारिआं नूं पता ही है कि तंबाकू खाण दे नाल या तंबाकू दे धुएं नूं शरीर दे अंदर ले जाण दे नाल साडे

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि

0: गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
1: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल की, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित

0: भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जनसेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9.

0: The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashwani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of Class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. And in IPL cricket, high-voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashwani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
1: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते हैं। जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Aiyar, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the layer of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
1: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
0: Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi.
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: During the program, Mr. Modi also interacted with sprinters Gurinderveer Singh and Animesh Kujur, who broke national records in the 100-meter race. Mr. Modi also reflected on the government's continuous efforts to preserve the country's priceless cultural heritage. He also referred to his recent visit to the Netherlands, where during a special ceremony, ancient copper plates from the Chol period were returned to India. The Prime Minister praised conservation efforts under the Namami Gange initiative, citing the successful rescue of a Gangetic dolphin trapped in a canal in Uttar Pradesh with the help of India's first Ganga Dolphin Rescue Ambulance. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisory.

0: All India Radio. We now bring you the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio.
1: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत है आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज.

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं रजनीश कुमार शर्मा
1: और मैं तपस्या,
0: आपका स्वागत करते हैं अनुगूंज कार्यक्रम की इस नूतन कड़ी में। आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कला, संगीत और साहित्य जगत की स्वरांजलि, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं इस प्रसिद्ध अभिनेत्री को, जो अपना परिचय स्वयं दे रही हैं।
2: जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम नरगिस है, लेकिन मेरा एक और नाम भी है जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था। वो नाम है कनीज फातिमा। और एक और नाम भी है जो मुझे अपने पिताजी की तरफ से मिला है, और वो है तेजेश्वरी। इसलिए कि मेरे पिताजी पंजाब के एक हिंदू थे और मेरी माँ उत्तर प्रदेश की एक मुसलमान औरत, और मैं बंगाल में पैदा हुई लेकिन अपने घर बार और बाल बच्चों के साथ महाराष्ट्र में रहती हूँ।
1: सन 1940 से लेकर 1960 के दशक तक नरगिस ने कई सफल फिल्मों में काम किया। बरसात, अंदाज, आवारा, दीदार, श्री 420 और चोरी चोरी इनकी बहुचर्चित फिल्में रहीं।
0: महबूब खान द्वारा निर्मित 1957 की फिल्म मदर इंडिया में नरगिस जी के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामित हुई। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म से नरगिस का एक संवाद।
3: देवी यहाँ से नहीं जाएगी।
4: खबरदार राधा, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना।
3: ठाकुर जी, देवी ने तुम्हें धन दिया और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाई है। मैं देवी को बताऊंगी,

0: अब मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती थी।
1: श्रोताओं, नरगिस पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें सन 1958 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं नरगिस से उनके फिल्मी जीवन के आरंभ के बारे में।
2: मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा हर रोल बनावटी न मालूम होकर असली मालूम हो। इसकी एक वजह ये भी थी कि मेरी तालीम और तरबियत ऐसे माहौल में हुई जहाँ जिंदगी को जिंदगी की नजर से देखा जाता था। रहा फिल्मी दुनिया से मेरे रिश्ते का सवाल, तो बस यूं समझ लीजिए कि फिल्मों से मेरा रिश्ता पैदाइशी है, यानी उस वक्त से काम कर रही हूँ जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। लेकिन हीरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर, जो महबूब साहब ने बनाई थी। सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा। मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी। मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है।
3: फिल्म तकदीर में नरगिस ने पहली बार मुख्य अभिनेत्री का चरित्र निभाया। इस फिल्म के सह कलाकारों को याद करते हुए नरगिस कहती हैं,
2: जैसा कि आप सब जानते हैं, मोतीलाल जी इस फिल्म के हीरो थे। वो हर लिहाज से मुझसे बड़े थे और मैं उन्हें हमेशा मोती भैया कहा करती थी। एक दिन

0: एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही थी और मैं हर रिहर्सल के बाद कहती थी, क्यों मोती भैया कैसा हुआ? और वो बिगड़ कर कहते थे, हद तेरा सत्यानाश, सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर, फिल्म की शूटिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मोतीलाल जी बड़े ऊंचे पाए के कलाकार थे, ऐसी बातों का असर उन पर नहीं होता था। हाँ, याद आया, इसी फिल्म में मशहूर आर्टिस्ट नूर मोहम्मद चार्ली ने मेरे बाप का रोल किया था। उनके साथ एक सीन ऐसा था कि वो जेल में बंद हैं और मैं यानी उनकी बेटी उनसे मिलने जाती। ये सीन जरा गमगीन था मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ इस अंदाज से टहलते थे कि मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ और तब महबूब साहब झिल्ला गए और एकदम जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डांटने लगे, यहाँ तक कि मुझे रोना आ गया। और उसी रोने के दरमियान ही महबूब साहब ने जल्दी जल्दी वो सीन मुझसे मुकम्मल करवा लिया।
1: पुरानी फिल्मों की तुलना नई फिल्मों से करते हुए नरगिस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
0: फिल्मों से मेरा संबंध काफी पुराना है, इसीलिए पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में काफी फर्क मुझे नजर आता है। खास तौर पर टेक्निकली हम लोगों ने बहुत तरक्की की है, लेकिन स्टोरी और डायलॉग के मामले में हम लोग तरक्की करने के बजाय कुछ पीछे ही खिसक आए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अब ऊपरी सजावट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आजकल फिल्मों में कश्मीर, कुल्लू और मनाली की हसीन वादियां तो देखने में आती ही हैं, लेकिन पत्थर को मोम कर देने वाले डायलॉग सुनने में नहीं आते। बहरहाल, ऐसा भी नहीं कि आजकल हर फिल्म ऐसी ही होती है, बल्कि कुछ अच्छी फिल्में भी बनती हैं।
2: श्रोताओ, पुरानी फिल्मों के कलाकार अपने अभिनय को प्रभावशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। अभिनेत्री नरगिस भी ऐसी ही कलाकार थी।
0: फिल्म एक्टिंग के बारे में आप लोग आम तौर पर तरह तरह के ख्यालात रखते हैं और अलग अलग बातें सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्टर्स जैसा कहते हैं या चाहते हैं वैसा तो हर कलाकार करता है या करने की कोशिश करता है, मगर खुद फनकार को भी चाहिए कि वो अपने फन को निखारने के लिए, उसमें जान पैदा करने के लिए जिंदगी की बहुत करीब से नाप तोल करे और खास तौर पर जो टिपिकल कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं उन्हें गौर से समझे। इस सिलसिले में मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ। फिल्म अनहोनी में मेरा डबल रोल था। जो खास और मुश्किल रोल था वो एक तवायफ का कैरेक्टर था। उसे सही ढंग से अदा करने के लिए मैं अपने भाई के साथ मर्दाना भेस बदल कर एक कोठे पर गई। वहां आए हुए लोगों के बीच बैठकर मुजरा सुना और उस नर्तकी की चाल ढाल, बातचीत, नाच गाना, पान पेश करने की अदा वगैरह वगैरह मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, ताकि मैं अपनी एक्टिंग से उस किरदार के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकूं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कलाकार को खुद भी काफी मेहनत करनी चाहिए।
1: सन 1968 की फिल्म रात और दिन उनकी अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण 3 मई 1981 को नरगिस का निधन हो गया। सन 1982 में इस महान अभिनेत्री की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे हम सुनवाएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विख्यात गायक पंडित डीवी पलुस्कर का गायन। तो अनुगूंज के इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस विराम के बाद।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्रोताओं, भारतीय संगीत में गायन की कई शैलियां हैं, जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमा, त्रिवट, चतुरंग आदि। चतुरंग शैली लुप्त होती जा रही है। आइए सुनते हैं पलुस्कर जी के स्वर में, राग सिंधुरा में, चतुरंग।

फिल्म बैजू बावरा में उस्ताद अमीर खान के साथ एक अविस्मरणीय जुगलबंदी के लिए भी पलुस्कर को जाना जाता है। आइए सुनते हैं उस जुगलबंदी का एक अंश।

पंडित डीवी पलुस्कर शुद्ध शास्त्रीय संगीत गायक के अतिरिक्त एक महान भजन गायक भी थे। आइए सुनते हैं पंडित जी का गाया लोकप्रिय भजन ठुमक चलत रामचंद्र।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनेंगे संस्कृत के प्रकांड विद्वान और हिंदी के लोकप्रिय कवि जानकी वल्लभ शास्त्री की कुछ रचनाएं इस अल्प विराम के बाद।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, मन की बात।

श्रोताओ, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 5 फरवरी 1916 को बिहार के गया जिले में हुआ था। वे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक भी थे। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, बाद में महाकवि निराला से प्रेरणा पाकर हिंदी में सृजन किया। शास्त्री जी गीतकार भी रहे हैं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा उनके गीतों और गजलों में सुंदर रूप से प्रकट होती है। आइए सुनते हैं उनका प्रतिनिधि गीत, किसने बांसुरी बजाई।

सन 40 के दशक में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने कई छंदबद्ध काव्य कथाएं लिखी जो गाथा नामक संग्रह में संकलित हैं। इसके अलावा उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसा श्रेष्ठ महाकाव्य रचा। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शास्त्री जी का एक और गीत।

0: श्रोताओं, हमारी आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, anugoonj@gmail.com।
1: जी हाँ, anugoonj@gmail.com। तो अब हमें यानी रजनीश कुमार शर्मा को
0: और तपस्या को
1: दीजिए विदा।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम अनुगूंज की आज की कड़ी के शोधकर्ता थे रंजन गुप्ता, राकेश बिहारी और डॉक्टर श्याम शर्मा। गीत रचना थी राजेश राज की और गायन स्वर था जितेंद्र सिंह का। आलेख और निर्माण था आशुतोष कुमार का और निर्देशक थे डॉक्टर संतोष नाहर।
1: अभी आप आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज सुन रहे थे।
2: You are listening to the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.

0: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। श्री असनापुरम येरैया आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री जी वेंकट रमणा से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनेट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी, एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय

0: Sri V.N. Balachandar. Sri Asanapurappu Yerraya is a renowned saxophone artist from Andhra Pradesh. He received his initial training under Sri G. Venkataramana. He later underwent advanced training under Sri Kalluri Mallayya and earned recognition as an A-grade artist of Akashwani Kadapa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of Kanchi Kamakoti Asthana Vidwan.
1: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली के साथ डोलू पर श्री वीएन बालचंदर संगति देंगे। श्री वीएन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुच्चरई टीजी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
0: इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट श्री असनापुरप्पु येरैया एंड पार्टी इज एकंपनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वीएन बालचंदर। श्री वीएन बालचंदर इज अ रिनाउंड डोलू आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ही रिसीव्ड ट्रेनिंग अंडर डिस्टिंग्विश्ड गुरुस इंक्लूडिंग श्री एन लक्ष्मी नारायण एंड तिरुच्चारई टीजी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई। ही इज ए टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी।
1: श्री येरैया अपने सैक्सोफोन वादन की शुरुआत कर रहे हैं निन्नू कोरी युनन्नुरा से। ये रचना टी सिंगाराचारी की है जो राग वसंत और आदि ताल में निबद्ध है।
0: श्री येरैया बिगिंस हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विद निन्नू कोरी युनन्नुरा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ टी सिंगाराचारी इन राग वसंता सेट टू आदि ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विद नाद लोलुड़ई।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वीएन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पटनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: Now you'll be listening to Ninnu Jeppa Karanamemi, a composition of Patnam Subramanya Iyer in Rag Mandari, set to Aditaal.

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सुरजानंद की है। राग कीरवाणी में ये रचना मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: You are now listening to the saxophone recital by Sri Asnapura Priyaraya in the Ravivasari Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. Sri Eraya next presents Samagana Priyakaram, a composition of Guru Sajananda in Rag Kiravani, set to Misra Chaputal.

0: श्री येरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तुरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है, राग है वृंदावन सारंग जो आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग वृंदावन सारंगा सेट टू आदि ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम यरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन, डोलू पर संगति दी श्री वीएन बालचंदर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरम यरैया एंड पार्टी इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वीएन बालचंदर। This program was recorded in the studios of Akashwani Kadapa, and this broadcast came to you from the studios of Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वाला शेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में शाजी वाला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वाला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले

0: पिछले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Man Ki Baat on Akashwani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
0: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
2: Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President Ooh Myint Aung Hlaing in New Delhi tomorrow.

0: जी दोस्तों, टूट जाए रेल गड्डी चन रोक लिया चन मेरा, क्या बात है जी। वैसे तो जी देखो, ये रेल गड्डी है ना, कईयों नू लै जांदी है जदों, तो फिर इंसान रेल गड्डी नू देखता जाता है कि मेरे मियाँ जी उस गड्डी च बैठ के सफ़र कर रहे हैं, और ये रेल गड्डी जिहड़ी है मेरे मियाँ जी नू दूर लैके जा रही है। क्या बात है जी, ये गल सही है। खैर जी, प्रोग्राम सौगात चल रहा है, और सौगात प्रोग्राम च तुसीं वी आ सकदे हो, जिवें साडे कॉलर आए ने। हैलो
1: हेलो वीर जी, नमस्कार।
0: जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: सुखबीर सिंह छाजली वाला बोलता मेरे। ठीक
0: वाह जी वाह, छाजली वाले हो, की हाल चाल ने?
1: है जी, वधिया। तुसीं दस्सो, ठीक हो जी?
0: बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। छाजली वाले बहुत चिर बाद साडे को गेड़ा मारिया।

जी दोस्तों, सचमुच ये तां प्यार मोहब्बत इश्क दियां गल्लां, और जिहड़ी मैं कर रहा सीगा ना कि जे तुसी नशा करना है तो इश्क दा करो, मुहब्बत दा करो, उस मुर्शद दे नाल इश्क करो, आकाशवाणी जलंधर दे नाल इश्क करो, साडे नाल इश्क करो, तां जो तुहाडा ये जिहड़ा नशा है वह किसी लाहे लग सके, किसी पासे लग सके। लो जी कॉलर आए ने, देखिए जी किहड़े दोस्त ने। हैलो हैलो हेलो हेलो आए भी चले भी गए। लो जब तक व्हाट्सएप मैसेज शामिल कर दें जे विच आ गए तो फिर गलबात हो जाएगी। जनकपुरी सहारनपुर तो जी जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विल्स डिकैस्ट्रो, तो इन्हों परिवार के होर बहुत सारे दोस्त मित्र ने। सुशील कुमार चिलाना पप्पी, परीक्षा चलाना पप्पी, तो इन्हों परिवार के बहुत सारे दोस्त हनुमानगढ़ तो इन्होंने सानू वट्सअप मैसेज किया। आदर्श नगर मलोट पंजाब तो राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, निवान शर्मा, तो इन्हों परिवार के होर बहुत सारे दोस्त मित्र ने। सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टी डी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल वर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप सिंह, ते कालका तो शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, मिठा बजाज, ते इना दे बिट्टा बजाज है, माफ करना जी बिट्टा बजाज, ते इना दे परिवार दे होर बहुत सारे दोस्त ने। लो जी फिर चलदे हैं जी, साढ़े दोस्त अज आके चले गए, पर गीत जिहड़ा कह गए सी हैप्पी रायकोटी दी आवाज़ दे विच, कहिंदे गीत सुना दिओ। आए कौन सन? बंसी लाल जी अंबाला तो आए सन, पर खैर जी जो फिर आए तो फिर देख लांगे, पर हुण तुहानूं गीत सुना देने उहनां दी पसंद आ।

0: जी दोस्तों, कुड़ी मर्दी है तेरी थी, तू थोड़ा जाता मरिया कर। क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत गीत। और साढ़े दोस्त आए सन पर चले गए, पर हुन नवे दोस्त आ गए ने। देखिए जी केड़े दोस्त ने। हेलो
1: हेलो, नमस्कार। श्याम शर्मा जी,
0: जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: श्री गुरु रविदास नगर मरोड़ तो फ्रीजा रस नहीं
0: वाह जी वाह, रस रस रस गनिया जी, बहुत बहुत स्वागत है
1: आई।
0: जी प्रोग्राम च।
1: थोड़ा ही बहुत बहुत थैंक यू साड़ी गल रिसीव करने वास्ते जी।
0: वाह रसगनिया जी, पहुंच गए तुसी साडे इस
1: हाँ जी
0: प्रोग्राम दे विच।
1: हाँ जी हाँ जी, पहुंच गया जी।
0: लो फिर, पिछली बार तो तुहाडी खैर मेरे को लगदा कि गैर हाजरी सी।
1: बाहर गए चले किसी काम ताई, काम
0: चलो,
1: हो फिर तुहानू पता, फिर तुहाडी भी गैर हाजिरी कई बार लग जाती होंदी है संडे नूं, फिर काम
0: आए
1: काज तो
0: हाय,
1: करने पैंदे है शर्मा जी।
0: बिल्कुल तुसी सीप लाती है
1: हाँ जी
0: साडी है अज। फिर
1: हाँ जी,
0: तुसी सीप ला दित्ती है साडी।
1: कोई नहीं कोई नहीं, भरा भरावां दी लाउंदे ही होंदे है जी। हाँ जी, आप दा
0: बिल्कुल
1: करके दिंदे ना, होर किसी दा थोड़ा पा लावांगे। हाँ जी
0: चलो, आज फिर मैं गल कर रहा सीगा रसगनिया साहब कि इंसान नू नशा जे करना तो संगीत दा कर लो,
1: हाँ
0: प्लांटेशन
1: जी
0: दा कर लो, इश्क
1: हाँ जी
0: दा
1: हाँ जी
0: नशा कर लो, पर
1: हाँ जी हाँ जी,
0: तंबाकू दा नशा नहीं करना चाहिए जेड़ा कि आज वर्ल्ड तंबाकू डे मनाया जा रहा है।
1: बिल्कुल थोड़ी सियानी गल है। वैसे तंबाकू तो बहुत मतलब हानिकारक पदार्थ है जी। हाँ जी,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये और कोई नशा मतलब जिवें कहिंदे दुध दा नशा कर लो,
0: आय
1: घ्यो दा
0: हाय
1: नशा
0: हाय,
1: कर लो,
0: क्या ही
1: हाँ जी
0: बात है जी, बिल्कुल
1: मक्खन दा नशा कर लो,
0: आय हाय हाय
1: हाय हाय। हाँ जी
0: हाय।
1: जी
0: ये तुसी तो अलग ही नज़ारे दवाते, अज मक्खन का भी नशा करवाता, दुध का नशा भी करवा देता
1: अच्छा, जिम्मे
0: है।
1: उदे

क्या बात है जी, खूबसूरत गीत। मैनू तेरा शबाब लै बैठा, रंग गोरा गुलाब लै बैठा। खूबसूरत शिव कुमार बडालवी दे ये अल्फाज और गीत जड़े जिसकी आवाज़ सी आसा सिंह मस्ताना, बहुत ही खूबसूरत सुमेल, बहुत खूबसूरत कॉम्बीनेशन दे नाल आपां ये गीत सुन रहे सी। ते लो जी फिर अगले कॉलर वल चलते हैं जी। साढ़े दोस्त पहुँचे ने, देखिए जी कि दोस्त ने। हैलो हेलो हेलो हेलो लो जी फिर आए तो चले गए। चौधरी जुल्फिकार अली चक लालिका बहावल नगर तो साढ़े दोस्त ने जिन्होंने व्हाट्सएप मैसेज किया है, कहते जी कि शाम जी कैसे हैं आप, आपका प्रोग्राम पेश करने का अंदाज लाजवाब है, आपसे गुजारिश है कि बस आप हमारे मैसेज जल्दी जल्दी शामिल कर लिया करें, मेहरबानी होगी। तो गीत कहते जी हमें कोई भी सुना दें। वाह जी वाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी जुल्फिकार साहब, चौधरी साहब थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। तो पिंड हीरावाली जिला फाजिलका तो सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा लिखते हैं जी। सत श्रीकाल शाम जी, सत श्रीकाल जी, प्रोग्राम कहते जी लाइव सुन रहे हैं। वाह जी वाह, लाइव सुन रहे हो तो असं लाइव ही पेश करते हैं जी, थोड़ा बहुत शुक्रिया जी। और कहते जी अज तुसी तंबाकू दे लई गल कीती है, वाकई जी बहुत नुकसानदायक चीज़ है, तो इस तो सबनों बच के रहना चाहिए। बिल्कुल जी, तुसी साढ़े इस विषय पर झात पुआई है, तुहाडा भी बहुत बहुत शुक्रिया। मरेलकोटला तो साढ़े दोस्त ने जी रमन अरोड़ा, तो कहते जी कि हरभजन मान की आवाज़ के गीत सुना दिओ। बिल्कुल जी, हरभजन मान की आवाज़ के गीत सुनाने हैं तुहानू, ते तुहाडे सारयां दा व्हाट्सएप करन दे लई, मैसेज करन दे लई बहुत बहुत शुक्रिया। ते लो फिर तुहानू सुनाने हैं हरभजन मान ते उन्हां साथियां दी आवाज़ां दे विच ये गीत।

0: जी दोस्तों, प्रोग्राम सौगात इसी तरह जी चलता रहेगा 1 बजे तक। और जिन्हें दोस्तों ने हाले तक कोशिश नहीं की है, जरूर कोशिश करो। 0181 2342 171 नंबर डायल करना है, 0181 2342 171। और जो दोस्त सूँ वट्सअप मैसेज करना चाहते हैं, 9465530777 9465530777। लो जी कॉलर आए ने, देखिए जी दोस्त केड़े पहुँच गए ने। हैलो,
1: नमस्कार शर्मा जी।
0: जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: महेश गर्ग, मंडी हरजीराम मलोड़ तो।
0: जी जी महेश गर्ग जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: धन्यवाद जी।
0: महेश जी तुसी प्रोग्राम च आने हो, प्रोग्राम चंगा लगता है।
1: हाँ जी।
0: ते

जी दोस्तों बिल्कुल, प्रोग्राम सौगात दे विच तुसी ही आना है और तुहाडा ही आण दा बणदा भी है। तुसी आओगे इस प्रोग्राम च, ते प्रोग्राम नूं कहिंदे ना चार नहीं अठ चैनल लग जांदे ने, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ ते सिर्फ श्रोतियां दा प्रोग्राम, तुहाडा प्रोग्राम। लो जी कॉलर आ गए ने। हैलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो? वाह जी वाह, बिल्कुल तुहाडा प्रोग्राम है जी। बिट्टू जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च। वाह, देखो बिट्टू भाजी आंदे ने ना, फिर ये भी अठ चैनल आ जांदे ने, क्योंकि इन्हां दा अपना प्रोग्राम जो होया। रसगनिया साहब एक गाना डेडिकेट कर गए सन, मिल गया ना तुहानू? वाह गल बिलकुल। देखो ये जड़ा नशा तुसी कीता है ना जी, ये नशा तो वाकई सब नू करना चाहिए। क्या बात है जी, और प्यार दा नशा जड़ा है ना, ये हर इंसान नू करना चाहिए, चाहे वो थोड़ा करे चाहे ज्यादा करे। क्योंकि प्यार दा तो नशा फिर घटदा नहीं, गा वधदे रहिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल, बिट्टू जी हाँ ये गल बिल्कुल सही कही है तुसी। अज फिर नशा करा दिए, तुहानू होर दस दियो फिर गीत दे राही केड़ा करा दिए। लो जी गीत तुहानू सुनाने जी, शुक्रिया जी कॉल करन दे लई बिट्टू भाजी। ओके बाय जी। लो ये दो सन साढ़े जिन्होंने फरमाइश की है जी, सरदूल सिकंदर ते अमर नूरी दी आवाज़ा दे विच, ते इसे गीत नूं साढ़े दोस्त ने तहसील डब्बली तो पिंड रामपुरा बिश्नोईया जिला सिरसा हरियाणा तो साढ़े दोस्त ने जी मक्खन राम जी, रजिंद्र कुमार, सुशील जिनागल, अंकित, राजदीप, इंदिरा, चिंकी ते सुमन ते असुईया, ये साढ़े दोस्त ने जिन्होंने सानू वट्सअप मैसेज किया सी। पिंड ते डाकखाना निमाणावाद नेड़े सफीदो मंडी जिला जींद हरियाणा तो जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर ते करमजीत कौर, इन्होंने भी सानू वट्सअप मैसेज किया। तो सदर बाज़ार कुरावली तो अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा, तो पूरा वर्मा परिवार है जी। तो लो जी थोड़ी सारे की पसंद, सरदूल सिकंदर ते अमर नूरी दी आवाज़ां दे विच एक गीत।

0: जी दोस्तों, बिल्कुल इश्क दियां गल्लां हो रही हैं, क्योंकि अज असीं यही कह रहे हैं ना कि जे तुसीं नशा करना है, इश्क दा नशा कर लो, प्यार मुहब्बत दा नशा कर लो, किसी किताब पढ़न दा नशा कर लो, संगीत दा नशा कर लो, खाण पीण दा नशा कर लो, लेकिन भैड़ा नशा बिल्कुल कोई ना करो। लो जी, कॉलर आए ने, देखिए जी किहड़े दोस्त ने। हैलो
1: जी, नमस्कार
0: जी। जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो? जी राम प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: थैंक यू जी।
0: राम प्रसाद जी, अज असीं गल कर रहे हैं कि इंसान नूं नशा जिहड़ा है वह किसी भी तरह का नहीं करना चाहिए। जे नशा करना है तो तुसीं उन्हां चीज़ां दा करो जिस दे नाल।
1: आकाशवाणी दा रेडियो दा करो।
0: वाह जी वाह।
1: रेडियो दा करो अपने मनोरंजन रहेगा तो नशे वाले बैठे ख्याल नहीं जाओ।
0: हाँ।
1: एक कोई मेरे सज्जन है तो मैं उन्होंने समझा दूंगा कि थक गया।
0: अच्छा।
1: दो तीन आ गया।
0: वो
1: तमाकू तो सेवन बड़ा करते हैं। जो मैं उन्होंने समझाना तो उन्हें एक जवाब रखा तो अगला मजाक समझे। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੜਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨੀ ਮਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੜਦਾ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰਦੇ ਆ।
0: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ।

0: सही बात है, बिल्कुल सही
1: मैं
0: किया
1: मुझे
0: तुझे।
1: बात होता भी जो आप बसे जो मरना ना कोई तड़प तड़प के मरते।
0: देखो ना फिर मुंह भी तुसी खराब कर लेना, तुहाड़े अंदर रोटी भी नहीं लंघनी।
1: हाँ जी हाँ जी, वही तो मैं कह रहा कि तुम देखो मेरे कुछ मेरे दोस्त ही एक बुआ मेरे ब्रदर की बुआ से लड़के, तो
0: जी।
1: मैं उन्होंने अक्सर समझाता ना बीड़ी ना पिए करो, घरदिया में भी समझाना। जो 66 साल की उम्र होगी तो बाद चो की किया भी और दो बंडल किए करने।
0: अच्छा।
1: फिर एक दिन काम करते करते कि डिग पिया, फिर गले च ट्यूमर हो गया।
0: ओ हो, देख लो।
1: फिर वो जो हाल होया वो तो देखो, फिर रोटी खाने तो भी बंदा तरसता ना जल्दी। क्या
0: गल उही है ना
1: और
0: जी,
1: बेहतर है माड़ी चीजा आप ना ही खाइए तो चंगा,
0: चंगी गल है। हाँ
1: चंगी चीजा खाओ, दुध
0: बिल्कुल गल उही हो रही
1: पियो,
0: है।
1: दही खाओ, लस्सी पियो, पनीर खाओ, जी खाने वाली चीजा,
0: आह
1: और वो भी सही खाओ, डुप्लीकेट नहीं खाओ।
0: हाँ बिल्कुल सही किया जी, बिल्कुल।
1: जिदा आप कहते लस्सी पीते अजकल बोतलों च बंद आने लगी, लस्सी बोतलों च बंद दुध आने लगा जी, की पता कि कैमिकल पाए होंगे बोतल, पैकिंग वाले मक्खन आने लग पे, मक्खन से झट खराब हो जाता। देखो कि डब्बिया च पैक किया होंगे गत्ते,
0: जी।
1: की पता कैमिकल पाए है। लोकी कहते रसकनिया साहब कह रहे ना मक्खन का,
0: कहते मक्खन दा ते दुध दा नशा कर लो।
1: हाँ जी हाँ जी, पर दुध विच भी लोकी बहुत कुछ पान लग पे।
0: अब बिल्कुल जी, ये तो हर देखो शख्स की अपनी ईमानदारी ते बेईमानी दे उपर रहिंदा है कि उसने चीज़ किवें दी वेचनी है।
1: सरकारां नूं भी चाहिए है भी इन्हां दी ये चीजां ते ना पाबंदी लाई जाए, इन्हां दी खेती बंद कराती जाए, ना रहेगा बांस
0: ना ही बजेगी बांसुरी।
1: ना गड्डे बजेगी बांसुरी, ना ही बीड़ियां तैयार होनगियां, तंबाकू नहीं बनेगा तो बीड़ियां कितों तैयार होनगियां।
0: बिल्कुल सही किया जी। ते आज फिर केड़ी फरमाइश लेके आए हो, खूबसूरत मैसेज दे नाले भी दस दियो।
1: एक गाना भी दस दिने हैं, थोड़ा जिहा टाइम मिनट एक मिनट का और लवागा, कि कोई नशे करने वाला ग्रोह ही साढ़े लागे वो फड़िया गया। फिर जिसे चार डंडे पे तो फिर मनिया भी मैं इतने भी चोरी की, मैं उसे भी चोरी की, ये नशा नहीं होंगे तो चोरी भी नहीं होंगी।
0: नहीं होनी सी, वो तो है ही है जी, नशे करके तो चोरी की जाती है।
1: हाँ जी हाँ जी, बहुत मनने तने नशे जे नहीं भी करते हम चोरी वो भी तो ना लग जाते हैं
0: वो
1: कभी।
0: भी लग जाते हैं बिल्कुल। ये तो समझण सोचण वाली गल है, इन्हां चीजां च रखिया की है।
1: हाँ जी, जे नशा नहीं करोगे तो फिर चोरी करती तो आते नहीं पैनी, क्योंकि घर के खान पीन लिए पैसे देंगे, तो नशा करने लिए थोड़े देंगे, रोटी खाओ
0: बिल्कुल
1: रोटी पियो
0: बिल्कुल
1: फल
0: बिल्कुल।
1: फ्रूट। हाँ जी
0: ये नाल तो आप अपनी सेहत भी खराब करते हैं
1: हाँ जी हाँ जी,
0: ते बाकी भी सारे काम खराब करते हैं। राम प्रसाद
1: आपे
0: जी
1: नहीं बिकेगा तो आपे बंद ही बंद है फिर। हाँ
0: आपे ही बंद है, आपे ही बंद है, बिल्कुल सही
1: जी,
0: गल है। दस दियो जी फरमाइश।
1: फरमाइश से संतवाद सुना अमी बेचता था करे ड्यूटी होना एक
0: गली लाहौर दी।
1: गली लाहौर दी,
0: हाँ
1: इतनी बहुत बढ़िया। देखो तुम्हें शिक्षा मिलती है तुम सुन के, देखियो जरा नजारा पूरा पूरा आएगा तो मियाँ जी भी ज्यादा आ जाएंगे।
0: वाह जी वाह, क्या ही बात है जी, बहुत
1: हाँ जी
0: शुक्रिया
1: हाँ
0: जी। लाओ सुनते हैं जी
1: मैं
0: फिर।
1: कन्हैया साहब नु भी डेलीगेट करना है गाना,
0: अच्छा
1: वो भी सुन के थोड़ा नजारा लैन, ते
0: लै,
1: मियाँ जी,
0: मैं कह
1: मियाँ
0: जी
1: जी तो
0: मियाँ
1: आ
0: जी
1: गया है गया,
0: आणगे आणगे, मियाँ जी दे नाल नज़ारा लैणगे ओ।
1: नजारा ना लैन। हाँ जी हाँ जी,
0: शुक्रिया
1: नशा करना
0: जी।
1: तो ये चीजा ना करो।
0: हाँ इन्हां चीज़ों का नशा करो। शुक्रिया
1: हाँ
0: जी,
1: जी
0: कॉल करने के लिए कुछ व्हाट्सएप मैसेज शामिल कर लिए जी।
1: थैंक यू कर लो।
0: लो जी, जलालाबाद पश्चिमी तो सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी ते निमित आहूजा होना ने सानू व्हाट्सएप मैसेज किया है। ते आ साढ़े दोस्त ने जी बंसी लाल जी, बेचारे बंसी बजा बजा के थक गए, लेकिन साढ़े तक इन्हों की पहुँच नहीं हुई अज। पर कोई गल नहीं, कहिंदे जी मेरी किस्मत च नहीं सी तुहाडे नाल शायद अज गल करनी, मैं तो बहुत कोशिश की तुहाडे तक पहुँचण दी, पर कोई गल नहीं, तुसी मेरी हाजिरी ए व्हाट्सएप मैसेज दे राही लगा दियो। ये साढ़े दोस्त ने बंसी लाल जी अंबाला तो पिंड मोड़ी तो साढ़े दोस्त जिन्होंने सानू ये व्हाट्सएप मैसेज किया सी। ते लो जी फिर।

0: जी दोस्तों, तुम ही रह गया अधूरा, मैं भी रह गई अधूरी, क्या बात है जी, की खटिया मैं तेरी हीर बन के। प्रोग्राम सौगात चल रहा है जी, सौगात प्रोग्राम च तुसी भी आ सकते हो, 20 मिनट की टाइम रह गया और तुसी 20 मिनट च हाजरी लगवानी है जिन्हें दोस्तों ने हाले तक साढ़े तक पहुँच नहीं की है। लो जी कॉलर आ गए, देखिए जी। हैलो,
1: हेलो, सत श्रीकाल सर जी।
0: जी सत श्रीकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: सर जी मैं राजू बोल रहा जी, चंडीगढ़।
0: राजू जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: धन्यवाद सर जी, थोड़ा भी स्वागत है जी।
0: की गल, नींद आ गई सी या वैसे ही?
1: ना जी, 11 बज के लगे होना।
0: अच्छा पौने 2 घंटे हो गए ट्राई मार दिया नू।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: यही हुंदा जी, देखो जिहड़ा मैं नशे की गल कर रहा सी ना जी, ये नशा है जिहड़ा आपां नू करना चाहिए। बहुत खूबसूरत गल कीती है जी, जे काम दा नशा कर लिया ना फिर तां इंसान तर जूगा।
1: हां जी हां, गुस्सा मारो दा नशा करो,
0: गुस्सा भी खत्म कर लो। बहुत वधिया जी। राजू जी केड़ी फरमाइश लेके आए हो?
1: सतिंदर सरताज दा गीत सुनाई गए।
0: लो जी सुनाने हैं तुहानू सतिंदर सरताज दी आवाज दे विच गीत। शुक्रिया जी कॉल करन दे लई,
1: धन्यवाद जी तुहाडा।
0: लो जी ई सन साडे दोस्त राजू जी, पौने 2 घंटे तो कोशिश कर रहे सन साडे तक पहुंचन दी, पर देखो ना जिथे नशे करन दी गल है, ये है नशा राजू जी ने जिहड़ा कीता कि साडे तक पहुंच बनाई उन्होंने और पहुँच भी गए साढ़े को। सुखदेव सिंह, नरेंद्र कौर, सनी मनी, काका बिट्टू लाडी, इन्होंने सानू जनक नगर जलंधर तो वट्सएप मैसेज भी किया जी, वो भी असी शामिल कर लिया। तो होर साढ़े दोस्त जोड़े वट्सएप मैसेज कर रहे हैं, असं उन्होंने भी शामिल करा। तो सुखबीर छाजली वाले ने भी सानू मैसेज किया, जिन्हों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोमलप्रीत नाल ने और इन्हों का बेटा भी नाल है जिन्होंने सानू वट्सएप मैसेज किया। लो सुनते हैं सतिंदर सरताज की आवाज़ के गीत।

0: जी दोस्तों, सचमुच सज्जन राजी हो जाए तो रौला नहीं पाईदा। इश्क हुंदा हीरियां वर्गा, इसनू संभाल के रखना चाहिए। पर इश्क उही गल हो रही ना कि अज ये जड़ा वर्ल्ड तंबाकू डे दे विच जड़ा लोग नशा करते ने, इस नशे तो हट के जे तुसी इश्क दा नशा कर लो, कम दा नशा कर लो, खाण पीण दा नशा कर लो, आकाशवाणी जलंधर दे नाल नशा कर लो, तो क्या ही बात है जी। लो कॉलर आ गए ने, देखिए जी दोस्त केड़े ने। हैलो,
1: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: सुधीर नूदान माराटोन करनाल से, बड़ा पुराना लिसनर आकाशवाणी जलंधर दा।
0: जी जी, सुधीर नूदान जी साडे पुराने लिसनर साडे तक पहुंचे ने, देखो 1 बजे तक साडे कोल बैठे हुए ने, ते किन्ना मोह किन्ना इश्क किन्ना नशा कर रहे ने साडे प्रोग्राम दा।
1: बिल्कुल, रोला नहीं पाई दा सज्जना।
0: रौला नहीं पाई दा सज्जना, ये जड़ा इश्क है ना हीरियां वर्गा, इस करके इसनू लुको के रखना चाहिए।
1: बिल्कुल जी, इश्क तो बिना जिंदगी नहीं।
0: हाँ बिल्कुल, देखो ना जे इश्क होएगा ता ही संसार चलेगा।
1: बिल्कुल जी,
0: इस करके इश्क ते चाहे उस मुर्शिद नाल कर लो, चाहे तुसी किसी इंसान दे नाल कर लो, इश्क ते करना चाहिए।
1: बिल्कुल जी।
0: ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੀ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਨੂਤਨ ਜੀ ਨੂੰ?
1: ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ।
0: ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਹੈ। ਲਓ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤ
1: ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ।
0: ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਗਿਆ ਗੀਤ,
1: ਉਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ
0: ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੋ।
1: ਮੈਂ ਕਰਨਾਲ।
0: ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੋ, 2-3 ਘੰਟੇ।

साढ़ा पाया की तुमुल पाके प्यार गयो फुल साढ़ा पाया की तुमुल पाके प्यार गयो फुल साढ़ा पाया की तुमुल पाके प्यार गयो फुल।

जी दोस्तों, मजाजिया जुबान विच्चों कुछ बोलदे ते इस प्रोग्राम दे आखिर दे विच तुहानूं गीत सुरजीत बिंदरखिया दा सुना रहे हैं। कोशिश तो साढ़े दोस्त कर रहे हैं साढ़े तक पहुँचने की, बैल आती है लेकिन फोन कट जाता है, पर खैर जी जिहड़े दोस्त कोशिश कर रहे हैं उन्हां दे लई सब दे लई ये गीत।

जी दोस्तों, इस गीत दे नाल ही अपने दोस्त शाम शर्मा नू अज दा प्रोग्राम खत्म करन दी दे दियो इजाजत। और इसी तरह जी अपना वादा करके जाना है कि अज तो बाद नशा जी करना है ते सिर्फ आकाशवाणी जलंधर दा या उस मुर्शद दा सोहणे रब दा तुसी नशा करो, खाण पीण दा नशा करो और सोहणा नशा करो जिस दे नाल तुहाडी जिंदगी होर खुशहाल हो सके। हुण दे दियो जी इजाजत अपनियां दुआवां च अपने दोस्त शाम शर्मा नू, इसी तरह याद करते रहा करो। तो हुण दे दियो इजाजत, वंदे मातरम, जय हिंद।

तुद आ गए अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाउ न जाने मेरा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी समग्र बाणी विच प्रभु दी सिफतो सलाह है, उस्तत है। सर्व कला समर्थ अकाल पुरख प्रभु दे चरणा विच बेनती है, उस दे गुणा दा वर्णन है। प्रभु ते जन दा रिश्ता प्रभु ते सेवक दे रिश्ते वांग है, क्योंकि सच्ची सेवा प्रभु दे हुकम अनुसार उही जन कर सकते हैं जिड़े प्रभु दे हुकम मुताबक चलते ने। इतना ही संभव हुंदा है जदों वो बेअंत गुणा दे स्वामी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्व कला समर्थ अकाल पुरख प्रभु दे चरणा विच जोदड़ी करते हैं। राग वढ़हंस विच उचारित शब्द विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दासा भाव विच आके ए अरजोई करते हैं। सेवक की अरदास प्यारे, जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे। सरवण करदे आ भाई प्रभजोत सिंह बाली ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

0: सेवक की अरदास प्यारे, जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे। इस शब्द अगायन कीता सी पाई प्रभजोत सिंह बाली ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। अकाल पुरख प्रभु दे हुकम नाल, अर्थात एक कवाओ दे नाल सृष्टि दा पसार हो गया। गुरबाणी विच बयानिया गया है, कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ, कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। अर्थात इस सारा पसारा जिसनू बयान ही नहीं कीता जा सकता, ते इस सृष्टि दे पसार करन वाले दा अंत भी नहीं लख्या जा सकता। उस दे अग्गे तां नतमस्तक होना ही बनता है, ते यही कहना बनता है, तुमरा लखा न जाए पसारा। सुनदे हां सुखजीत सिंह हुरां पासों ए वार्ता।
1: संसार अंदर अनेकां धर्म हन, हरेक धर्म ने सृष्टि की उत्पत्ति कदों किवें होई दे बारे अपने अपने विचार दित्ते हन। सिख धर्म दे बानी गुरु नानक साहब ने इस संबंध विच दस्या है कि सब तो पहला परमेशर ने अपने आप नूं प्रकाशमान कीता, फिर परमेशर ने हवा पैदा कीती, हवा तो पानी, अते फिर पानी तो वख-वख तरह के जीव जंतुआं की पैदाइश आरंभ हुई। श्री गुरु नानक देव जी वल्लों अज तो लगभग 500 साल पहला दिते गए इस सिद्धांत की सच्चाई नूं विज्ञान वल्लों भी प्रमाणित कर दिता गया है। पहले पातशाह दे पावन बचन हन, साचे ते पवना पया, पवनै ते जल होए, जल ते तिर पवन साजिया, घट घट जोत समोए। सृष्टि का पसारा कदों होया दे बारे विच वख वख समें ते साइंसदाना ने आपो अपनियां खोजां दे आधार ते दसण दा जतन कीता है, पर इस संबंध विच साइंसदान एक मत नहीं हो सके। जे कोई सृष्टि की आरंभता दे समें नूं निश्चित करके दसण दा जतन करता है, तां होर कोई साइंसदान उस तों होर अगे जा के अपनी खोज द्वारा पहले नूं रद्द करदे होए नवीं खोज विच बदल देंदा है। इस संबंध विच जदों असीं गुरबाणी की रोशनी विच वेखदे हाँ तां श्री गुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहिब की मुढ़ली बाणी जप विच ही स्पष्ट कर देंदे हन कि जेकर सृष्टि की आरंभता का समा सही रूप विच लब्भे जाण योग हुंदा तां हिंदू, इस्लाम, ईसाई, योग मत आदि दे पहला ही रचे जा चुके पुराण, कुरान, बाइबल आदिक धर्म ग्रंथां विच इसका जिक्र जरूर मिल जाना सी। गुरु साहिब तां बिना किसी ऐसे वाद विवाद विच पैण दे स्पष्ट करदे हन कि सृष्टि की आरंभता कदों हुई दे बारे जे सोचण लगीए तां बगैर हैरानी ते अश्चर्यता दे होर कुछ भी हथ नहीं आउंदा है। ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 21 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਵਣ ਸੁਵੇਲਾ ਵਖਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ, ਕਵਣ ਸਿਰੁੱਤੀ।

माह कवन जित होवा आकार, वेल न पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण, वक्त न पायो कादियां जे लिखन लेख कुरान, थित वार न जोगी जाणै रुत माह न कोई, जा करता सृष्टि कौ साजै आपे जाणै सोई। सृष्टि दी रचना कदों होई दे बारे तां तुमरा लखा न जाए पसारा ही कहना बनदा है। विचारवाना दा मत है कि ए दिखाई देंदा पसारा एक अजई हाथ लिखत किताब वांग है जिस दे ना पहले पन्ने हन अते ना ही अखीरले। इस दा भाव यही बनदा है कि बेअंत परमेश्वर वल्लों साजिया गया समुच्चा ब्रह्मांड असीम करते वांग ही असीमत है। इसलिए सृष्टि दे आरंभ बारे कोई भी अनुमान लगाउणा बेअर्थ ही है अते केवल क्यास अराइयां ही हन। प्रभु वल्लों रचे गए सृष्टि दे समुच्चे पसारे नूं पूर्ण रूप च लख सकना भाव जानन संबंधी कोई भी दावेदारी करना साडी अज्ञानता ही गिणी जावेगी। सारी लोकाई दे सिरजनहारे रब दे अपने जोत स्वरूप गुरु नानक साहब ने सानू समझाया है कि अकाल पुरख ने आप ही अपने आप की साजना करके अपना नामना बनाया, फिर उसने कुदरत की रचना कीती अते अपनी रची हुई कुदरत विच एक रस व्यापक हो के आप ही सारे जगत का तमाशा वेख रहा है। आप ही जीवां नूं साज के दाता देंदा है अते आप ही अपने हुक्म द्वारा जीवां नूं दित्ती गई जिंद ते शरीर नूं वापस भी लै लैंदा है। इस संबंध विच आसा की वार दी पहली पौड़ी राही गुरु नानक पातशाह पावन गुरबाणी दे बचन बख्शिश करदे होए साडी अगवाई करदे हन। आपीनै आप साजियो, आपीनै रचियो नाओ, दुई कुदरत साजियै कर आसन डिठो चाओ, दाता करता आप तू तुस देवें करें पसाओ, तू जानोई सब सै दे लैसें जिंद कवाओ, कर आसन डिठो चाओ। संसार दे दिसते पसारे संबंधी लोकां विच ये ख्याल आम प्रचलित सी कि इकली माया किसी जुगती नाल प्रसूत होई ते प्रतख तौर ते उसते तीन पुत्र पैदा होए। उन्हां विच्चों एक ब्रह्मा कारबारी भाव जीव जनता नूं पैदा करन लग पए, दूजे विष्णु भंडारे दे मालक बन के जीवां नूं रिजक भेजण दे काम विच लग पए, अते तीजे शिव जी अपनी कचहरी ला के जीवां नूं संघारन भाव नाश करन दे काम विच लग गए। पर गुरु नानक साहब इस प्रचलित ख्याल नाल सहमत ना हुंदे होए अपना मत प्रगट करदे हन कि जेकर मन लिया जावे कि ऐसा ही हो रहा है तां इन्हां तीन देवतियां नूं पैदा करन वाला तां प्रभु आप ही है। सो असल गल ये है कि जिवें उस अकाल पुरख नूं पाउंदा है अते जिवें उस दा हुक्म हुंदा है तेवें ही वो आप ही संसार दे पसारे दी सारी कार नूं चला रहा है। पर एक ऐसा कौतुक है कि वो अकाल पुरख अपने हुक्म विच चल रहे सारे जीवां नूं वेख रहा है पर जीवां नूं अकाल पुरख नहीं दिसदा। इस प्रथाए जपजी साहब दी बाणी विच गुरु नानक पातशाह जी दे बचन असीं पढ़दे हाँ, एका माई जुगत व्याई तीन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान, जिव तिस पावै तिवें चलावै जिव होवै फुरमान, ओ वेखै उन्ना नदर ना आवै बहुता एह विडान, आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत, वाले पसारे नूं प्रभु वल्लों किवें साजिया गया। दे संबंध विच जदों असीं गुरबाणी दी रोशनी विच समझण दा यतन करदे हाँ तां साडे सामणे हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहिया जाई।

तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा। इस शब्द का गायन कीता सी भाई कमलजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु।

0: काल जुग
1: द्वापर तपे का सत अगिरथ वाहु काल जुग रथगन का कूड अगिरथ वाहु महला पहला शाम कहे स्तंभर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सब कुछ सा समावे रिक कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैं सूर नायले प्रात जाहे नानक तुम खंत्रपा जुज मह जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी लै बिंद्रा बन में रंकिया कल मह बेद अथर्बण हुआ ना उखदा ये लो पया नील बस्तर ले कपड़े पैरे त्रक पठानी अमलकिया चारे वेद होश चार पढ़ै गुण तन चार विचार पाओ पक्कर नी सदाए तो नानक मखंतर पाए।

अगे वास्त जानिए पितरी चोर करे वडगे है हाथ दलाल के मुसफिए करे नानक अगे सो मिले जे खट्टे काले दे।

0: मन का सुतक लोभ है जिहवा सुतक कूड़ अखी सुतक वेखणा परत्र परधन रूप कनि सुतकन पैलैत बारी खाहें नानक हंसा आदमी बदे जम प्रजाए महला पहला
1: सबो सुतक भरम है दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म है भाणे आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितोण रिजक संभाए नानक जिन्नी गुरमुख बुझिया
0: तिन्ना सूतक नाए पाड़ी सतगुरु।